0: delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased mother-in-law is a former judge and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
1: Two aaropi hain, jo ladka hai Samar aur uski mother.
2: Anticipatory bail dena माननीय न्यायालय का काम है. बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
0: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होगा आपके फैमिली के लिए अपने बेटी के लॉस पर और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से हम उसको समझ सकते हैं. बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी. पहले बात तो जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए वहाँ आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
3: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई. उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं. तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है. आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए. ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में कि देयर इज सम सस्पिशियस थिंग्स.
0: एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ. क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
3: नहीं नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी. वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी. वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी. जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया. और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया. और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी.
0: एक और जो सवाल सामने, नहीं प्लीज बोलिए.
3: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर.
0: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे. एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
3: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है, वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये।
0: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ के
3: दबाव था
0: से?
3: ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस। उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है, उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है। तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे। देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग थी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ
0: बिल्कुल एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
3: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है सिस्टम, हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना। आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं, गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके पीएम रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम, और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर, हमको हमको हम मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है।
0: जी।
3: हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
0: नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस
3: इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पीएम टू जल्दी से जल्दी होना चाहिए, आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं, मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
0: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
3: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू,
0: थैंक यू। Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
4: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
5: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
4: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
6: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
4: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
0: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports, take a look.
7: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
4: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
8: விஜய் மேல எனக்கு போறாமே, நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் தான் இல்லாத போது அவர் மேல எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமல் வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 years டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன், நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை, கெட்ட பேர். விஜய் என்ன பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன், அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன பொறாமல்?
4: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
8: ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து அரசு சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேற ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் நான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
4: Triggered the buzz. Thalaivar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as Chief Minister.
7: Sir, Vijay mudalvara porupe irukkaru.
4: Kamal Hassan also weighs in, backs Vijay, but cools expectations. Says judging a government in days is like astrology, calls for 6 months, and says don't over or underestimate newcomers.
9: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும், 6 நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும், 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது. அரசியல் சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
4: From whispers to clarity, Thalaivar draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest, or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today.
0: Tamil superstar Vijay's dramatic rise to the Chief Minister's chair in Tamil Nadu is sparking political comparisons across the South, especially with the Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pavan Kalyan. But the Janasena chief has now made it clear that Andhra's political landscape is very different from Tamil Nadu's, and that political success cannot be replicated overnight. Here's a report on the same. Take a look.
4: Vijay's stunning ascent to Tamil Nadu's top job has sent ripples far beyond the state's borders. Amid this political fervor, comparisons have emerged with Andhra Pradesh's superstar and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. While speaking to his party workers at Jan Sena's headquarters in Mangalagiri, Pawan Kalyan acknowledged the mounting pressure. The power star directly addressed his fans and political supporters who are wondering whether Pawan will immediately achieve the same feat as Vijay. Pawan pointedly reminded supporters that every state has its own distinct political dynamics and that what works in Tamil Nadu doesn't automatically translate to Andhra Pradesh. Solo politics, he made clear, is far easier said than done. Pawan Kalyan used a Telugu idiom to illustrate his point and sought to dismiss any comparisons to the new Tamil Nadu Chief Minister.
10: మన ముఖ్యంగా మొన్న తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను చంపేస్తారు అందరం. దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తా అంటే దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు.
4: Pawan's remarkable political ascent saw him transform from a mass hero to a mass politician. Although he faced early headwinds after founding the Jan Sena party in 2014, he rebounded to achieve a stunning victory in the 2024 elections, assuming office as the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Therefore, Pawan's legion of fans are unlikely to stop comparing him with Vijay anytime soon. Bureau Report, India Today.
0: On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than two children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report.
4: It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than two children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today.
0: On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
11: Watching India Today.
12: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
13: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: There is no resolution to the war in West Asia. Global crisis is increasing because of the conflict. But at the receiving end is Aam Aadmi. It is another blow to the common man. The prices of CNG have been increased once again. This time, the prices have been increased by 1 rupee per kilo, marking the second consecutive increase in 48 hours and deepening the fuel cost burden on commuters. Earlier on May 15th, CNG prices were increased by rupees 2 per kilo. With the latest revision, CNG in Delhi will now cost 80.09 per kilo. In Noida and Ghaziabad, the revised rate stands at 88.70 per kilo. This hike will likely affect transportation costs as lakhs of private vehicle owners, cab operators and commercial transport users depend on CNG.
1: First time, in fact, the CNG prices have breached 80 rupees per kg. In fact, in Noida and other parts of NCR, Ghaziabad, it will be eventually 88, more than even 88 rupees per kilogram. In fact, one of the CNG pumps, many of these areas, we also ventured this since this morning after we heard the announcement. Few of the CNG pumps are not even operational. We have been told that they are waiting for a notification and probably this will be also time for them to profit making. But eventually there is no idea how, you know, what will be that, what extent the price is going to go up. But at these the CNG pumps, kitna asar padega is par?
2: Bahut mushkil padega isme. 2-3 rupiya din bhar ka kam se kam 15-20 rupiya. एक ऑटो से 50,000 ऑटो है, कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार, कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रेज्ड एन अलार्म दैट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड इंपैक्ट डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं.
0: द रिपीटेड हाइक्स आर एट्रिब्यूटेड टू सर्जिंग इंटरनेशनल गैस प्राइसेस, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: Desh bhar mein jaye, desh ki janta bhar mein jaye, aam aadmi mar jaye. आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा, किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है. अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे. ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है.
0: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: Probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections, and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhare. According to the CBI, Mandhare was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools, which she leaked to students. Delhi's Rouse Avenue Court has now sent Mandhare to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko mastermind.
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhare and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhare had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
8: सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, RSS, BJP और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
5: Another day, another daughter. This time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered, and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
9: Two aropi hain, jo ladka hai Samar aur uski mata.
10: Anticipatory bail dena maniye nyayalay ka kaam hai. Baki hum apni jaanch kar rahe hain. और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother, Mr. Sharma. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा difficult time होगा आपके family के लिए। अपने बेटी के लॉस पर और जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से हम उसको समझ सकते हैं बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी पहले बात तो जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी
11: जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी
7: कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई। उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है, और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है। आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़प रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी FIR हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए। ये साफ साफ प्रतीत होता है PM रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देर इज सम सस्पिशियस थिंग्स।
5: एक एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ। क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
7: नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी, वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी। जब बातचीत करते ही करते ही 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई, और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया। और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही, और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया। और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी।
5: एक और जो सवाल सामने, जी नहीं नहीं प्लीज बोलिए।
7: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर।
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे। एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भाई दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
7: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है, वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये।
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ के
7: दबाव था
5: से?
7: ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्टी नहीं किया जा रहा है। तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस। उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है। उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है, और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है। तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे। देयर आर लॉट ऑफ ड्यूबियस थिंग्स। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ।
5: बिल्कुल, एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
7: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है सिस्टम। हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना। आपका अभियुक्त घूम रहे, फ्री होकर के घूम रहे हैं, गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके PM रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम, और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर, हमको हमको मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम ये केस, आप
7: इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे.
7: थैंक यू.
5: Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
11: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
12: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikanth has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports. Take a look.
13: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapati's win? After weeks of speculation, Rajnikanth puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
14: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் தான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாமே? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 years டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன், நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை. கெட்ட பேர் விஜய் என்னை பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டால் அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன், அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன பொறாமை.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
14: Stalin avargal vandha adu kolathurile vandha thottathu enakku konja sangadama irundhathu. Adukaga oru nanbanangra murayila nadpu murayila avaru poyana paatha. அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது, இப்போ அவர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க, வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: So what's triggered the buzz? Talaiwala's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning. And adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
13: சார், விஜய் முதல்வரா பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: கமல் ஹசன் ஆல்சோ வேஸ் இன், பேக்ஸ் விஜய் பட் கூல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். Says judging a government in days is like astrology. Calls for 6 months and says don't over or underestimate newcomers.
15: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும். 6 நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படிதான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியல். சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, Talaiwa draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than 2 children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than 2 children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families, or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today. On that note, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
16: Watching India Today.
17: Craving something specific? From global flavors to viral snacks, TikTok has it all. If you can dream it, you can make it. Right at home. Find your next favorite dish on TikTok.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I tried to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
19: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
16: You are watching India Today.

0: सीएनजी पंप्स, कितना असर पड़ेगा इस पर?
1: बहुत मुश्किल पड़ेगा इसमें, 2-3 रुपया दिन भर का, कम से कम 15-20 रुपये एक ऑटो से, 50,000 ऑटो है, कितना रुपया लगा रहे हैं सरकार, कितना फायदे में जा रही है वो देखिए पहले आप।
2: Prime Minister Modi has raised an alarm that global conflicts could impact decades of economic progress.
3: आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं।
2: द रिपीटेड हाइक्स आर एट्रिब्यूटेड टू सर्जिंग इंटरनेशनल गैस प्राइसेस, higher crude oil costs, rupee depreciation and supply disruptions due to the ongoing West Asia conflict. As India is gearing up to tackle the crisis, the Modi government is receiving criticism from opposition, calling the hike post-election recovery campaign.
4: देश भाड़ में जाए, देश की जनता भाड़ में जाए, आम आदमी मर जाए, आम आदमी को जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं होगा, किसान मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होगा? आज डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन की लाइन लगी है लंबी, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, सोने के दाम बढ़ गए, फॉरेन कंट्री मत जाओ बोल रहे, और 15-15 दिन के लिए पंतप्रधान भाग रहे। ये सब जो है वो केवल उपदेश जो है, ये आज की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है।
2: As the political war of words rages on, the inflating fuel prices continues to burn a hole in the common man's pocket. With Karan Singh and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.
5: Now, the CBI's investigation into the NEET paper leak is widening by the day. The probe is now uncovering a highly organized network from professors linked to the paper setting process to coaching connections and an alleged trail running across multiple states. The political battle over the controversy is also intensifying, with the opposition targeting the centre over alleged lapses in the examination system. While the government says strict action is already underway, here's a report on the same.
6: CBI's probe into the NEET paper leak is now revealing a multi-layered racket involving alleged insiders linked to the exam process, middlemen, coaching connections and the circulation of question papers across states. Among the alleged kingpins is Pune-based botany professor Manisha Mandhari. According to the CBI, Mandhari was associated with the examination process as a subject expert and had access to confidential botany and zoology question pools which she leaked to students. Delhi's Rao's Avenue Court has now sent Mandhari to a 14-day CBI custody.
7: Manisha ji, aapko paas se mic
8: bata rahe hain kya is bare mein.
6: Investigators believe one of the earliest dissemination points emerged through the connection between Manisha Mandhari and another Pune-based accused, Manisha Vaghmare. As per the CBI, Mandhari had mobilized NEET exam candidates through Vaghmare and disclosed questions to these students. The court proceedings have also unearthed links between P.V. Kulkarni, a retired chemistry professor, and the chemistry paper setting process. Both Manisha Vaghmare and P.V. Kulkarni have also been sent to 10-day CBI custody. The probe is still underway, and investigators say more arrests and disclosures are possible as the digital and financial evidence trail is examined. Meanwhile, the opposition continues to target the government over the paper leak. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi has reiterated that Education Minister Dharmendra Pradhan must be sacked. Directly targeting Prime Minister Narendra Modi, Rahul Gandhi alleged that the BJP-RSS nexus has destroyed India's education system.
9: Sachai hai कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
6: In response, the BJP has accused the Congress of politicizing the issue, clarifying that the government has immediately taken corrective measures.
10: Rahul Gandhi ki aadat ho gayi hai ki har cheez ke liye Pradhan Mantri ko blame karte hain. NIT ko lekar jo dikkatein aayi hain, us par Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ne bahut vistar se jawab de diya hai. Aur aainda dikkat na aaye iski puri guarantee di gayi.
11: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है।
6: As the CBI digs deeper and political heat intensifies, the NEET leak gate probe is now as much about accountability as it is about restoring trust in the system. With Anmol Bali and Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
5: Another day, another daughter, this time in Madhya Pradesh. Just 5 months ago, Twisha Sharma, resident of Uttar Pradesh's Noida, was married to Bhopal-based advocate Samarth Singh. She was promised happiness but was allegedly delivered horror. On Tuesday night, Twisha's family received the news of her death. Twisha's family has leveled some very serious allegations against her in-laws and husband. Her family claims she was subjected to mental harassment and domestic violence. They also allege that she was forced to terminate her pregnancy. The family has even made a claim that Twisha had called her mother shortly before her death and spoke about the pressure that she was under. But the police say no suicide note was recovered from the spot. It's a case of unnatural death that's been registered and an investigation is underway. Meanwhile, Twisha's family is having none of it and has started protesting outside the Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Let me also tell you that the deceased's mother-in-law is a former judge, and a Bhopal court has already granted anticipatory bail to retired Judge Giribala Singh, citing her age. The sudden death of their 33-year-old daughter has raised several questions. Viewers, the cost of marriage can never be death. Another daughter has died. How many more before stricter laws are put in place? Clearly, Twisha deserved a future and not a funeral. And justice must be served.
12: दो आरोपी हैं, जो लड़का है समर्थ और उसकी मदर।
13: एंटीस्पेट्री बेल देना माननीय न्यायालय का काम है। बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं और हमारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष और वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
5: Earlier, I spoke with Twisha's father, listening to what he had to say. And joining me in their hour of grief is Twisha's father and brother. Mr. Sharma, thank you so much for joining us. We can understand that this will be a very difficult time for your family, for your daughter's loss. And जो पीड़ा आप अभी गुजर रहे हैं जिस पीड़ा से, हम उसको समझ सकते हैं, बट कुछ सवाल है जो हम भी आपसे पूछना चाहेंगे और जिनका जवाब पूरी देश अभी जानना चाहेगी। पहले बात तो, जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए, वहां आप किससे मिले और उनसे क्या बातचीत हुई और उनके पास आपने क्या मांगे रखी?
14: जी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में हमारी कोई ज्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे, और एक तरीके से देखा जाए तो लाचारी प्रकट हुई। उन्होंने बोला कि इस जुडिशरी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जुडिशरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और इसमें एक चीज बड़ी स्पष्टता सामने निकल के आ रही है कि जो अक्यूज्ड हैं उनकी फैमिली से एक बहुत बड़ी लोकायुक्त हैं जिनका नाम सत्येंद्र सिंह है, जो इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक लोकायुक्त के सामने कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा नेता भी जाने से डरता है, और इसी के कारण जो है हम हर चीज से यहाँ पर तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के सांस हमारी मर रही है, और ये कानून हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है। आज आप देखिए कि मैं इतने दिन से यहाँ तड़फ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी एफआईआर हुई, उसके बाद एक एक स्टेप पर हमारे अड़ंगे डाले गए। ये साफ साफ प्रतीत होता है पीएम रिपोर्ट से और बॉडी को देखने के बाद, चोट के मार्क्स देखने के बाद में, कि देर इज सम सस्पिशियस थिंग्स।
5: एक एक ऐसी कॉल सामने आई है कि त्विशा सुसाइड के पहले, इसे अभी सुसाइड जो पुलिस कह रही है, ठहरा रही है, उसके पहले उनकी बात हुई थी अपने भाई के साथ। क्या आपको पता है उस कॉल में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी? क्या उसने बताया था कि उसको डर है अपने जान गंवाने की?
14: नहीं नहीं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो कॉल में जो बात हुई थी, उनकी जो कॉल थी, वो अपनी मदर के साथ बातचीत कर रही थी, वो रो रही थी, वो 10-5 में रो रही थी। जब बातचीत करते ही करते 10-5 पर उसका पीछे से आवाज आई और एक जो आवाज समर्थ की लग रही थी, उसके हस्बैंड की लग रही थी, और धड़ाम से फोन कट कर दिया गया। और उसके बाद ये बराबर फोन मिलाती रही और इसको समर्थ को भी मिलाया, लड़की को भी अपने मिलाया, इनकी सास को भी मिलाया, किसी तीनों ने फोन नहीं उठाया। और जब फोन उठाया तब ये घटना घट चुकी थी।
5: एक और जो सवाल तो सामने, जी नहीं नहीं प्लीज बोलिए।
14: जब फोन उठाया उसने तब बोला शी इज नो मोर।
5: मेरा आखिरी दो सवाल है आपसे। एक ये कि जो अबॉर्शन की रिपोर्ट्स आई है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर थी त्विशा से खुद कि उस पे किसी तरह का भी दबाव है उस फैमिली से, समर्थ के फैमिली से?
14: भयानक दबाव उसके ऊपर, इतना भयानक दबाव था कि उसके चैट्स में साफ रिफ्लेक्ट होता है, वो उससे दोनों ये माँ बेटे कहते थे किसका बच्चा है ये।
5: तो आप क्लेम कर रहे हैं कि अबॉर्शन का दबाव था समर्थ के
14: दबाव
5: फैमिली
14: था
5: से?
14: ये तो लड़की ने बोला कि पापा मैं इस बच्चे को इनके कंसेंट के साथ ही इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती ऐसी स्थिति में बच्चे के की जहां पर मुझे ऐसा ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो इसने उन्हीं के घर के ही सारे क्लिनिक से जहां इन्होंने एविडेंस दिए हैं, आप उन एविडेंस को देखोगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस इन्होंने जमा किए कि डॉक्टर्स की राय है, जो कि जो पेपर उन्होंने सबमिट किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इट इज नॉट फॉर द लॉ पर्पस। उसमें उन्होंने डेट के भी जो डाले हैं उसमें भी डेट ऐसा लग रहा है कि उसमें अपने हिसाब से डेट डाली गई है। उसके अंदर सेम डेट में वो अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट करा रही है, सेम डेट में वो अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करा रही है और उसमें डॉक्टर उसके वो लिख रहा है। तो ये इनके फैमिली डॉक्टर्स ही हैं जो जो उनकी क्लिनिक्स हैं जहां पर ये लोग ये एक्टिविटी करके रहे। देयर आर लॉट ऑफ डूबियस थिंग। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आपको मैंने बताया इतना इन्फ्लुएंसियल हो गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में अटैक हुआ, हमको वहां से भगाने की कोशिश की गई, यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना हम किन के खिलाफ?
5: बिल्कुल। एक तरीके से क्या आप कहेंगे कि आपका ये लड़ाई अब ये सिस्टम के अगेंस्ट ही हो चुका है?
14: बिल्कुल अंग्रेज हो चुका है जी सिस्टम, बिल्कुल काम लचरी हो चुका है सिस्टम। हमसे भरोसा जरूर दिला रहा है पर काम ही नहीं कर पा रहा ना। आपका अभियुक्त घूम रहे हैं, फ्री होकर के घूम रहे हैं, गिरीवाला जी को बेल दे दी गई, आपके पीएम रिपोर्ट के लिए अटका दिया गया आपका काम, और क्या आप उम्मीद करेंगे न्याय की? हम चिल्ला रहे हैं, हम मर रहे हैं यहाँ पर, हमको हमको हम मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। हम चाह रहे हैं भाई देशवासियों से कैसे भी, ये एक तरीके का निर्भया कांड की तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है हमको।
5: नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ऐसे मुश्किल वक्त पर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपकी बात पहुंचा रहे हैं। हम
14: ये केस इसको किसी भी तरीके से, मेरे केस को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, PM2 जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप लोगों का यही सहयोग है, ये अपील मेरी सुने जो इसके जिम्मेदार पोस्ट पर लोग हैं। मैं एक बहुत भारत का एक सम्मानी छोटा सा नागरिक हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट।
5: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपके मैसेज को आगे तक लेके जाएंगे।
14: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू,
5: थैंक यू। Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. After days of search operations and mounting political attention, Bhagirath surrendered on Saturday and was taken into custody. The case has triggered a major storm in the state, with activists demanding strict action, while Bandi Sanjay has termed the case a political conspiracy. Here's a report. Take a look.
6: After days of cat and mouse chase, Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bandi Sai Bhagirath, has been arrested in connection with a POXO case registered by Cyberabad Police. Images accessed by India Today showed Bhagirath, accompanied by his lawyers, surrendering before the cops late on Saturday. After days of search operations, lookout notices and political heat, Bhagirath was taken into custody and later remanded to judicial custody by a local court. The case was registered based on a complaint involving a 17-year-old girl. Police invoked serious sections of the Bhartiya Nyaya Sanhita along with the provisions of the POXO Act after recording the survivor's statement before a magistrate.
15: Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath. Police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS. And as per POXO protocols, we have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean.
6: Cyberabad police said that multiple teams were deployed across several locations, including Delhi and Karimnagar, before Bhagirath was traced near the police academy area and apprehended by the special operations team during a patrolling operation. The arrest has triggered sharp political and public reactions, with activists demanding strict action in the case.
16: We have been demanding since initially that this fellow should be arrested and put behind the bars, and the trial should be made on the immediate trials. We demand that a sitting judge, this case should be addressed.
6: Union Minister Bandi Sanjay has said that when it comes to law, everyone is equal. He, however, maintained that the charges against his son are nothing but a political conspiracy. With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? That's the question that's been driving the buzz for days. Now Rajnikant has stepped in to set the record straight, denying any jealousy, calling the speculation misplaced and addressing the moments that triggered the very chatter. India Today reports, take a look.
17: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: Was Thalaivar unhappy over Talapathy's win? After weeks of speculation, Rajnikant puts the buzz to rest, setting the record straight on his stance over Vijay's victory.
18: விஜய் மேலே எனக்கு போறாமே நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போறாம? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன போறாம வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன், விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு நல்லதில்லை. கெட்ட பேர் விஜய் என்ன பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லதில்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்ருக்கேன், அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாம.
5: He also strikes a personal note, calls Stalin's loss upsetting, says friendship is beyond politics.
18: Stalin avargal vandha kolathurla vandha thottathu enna konja sangalama irundhathu adukaga or nanbanangra murayila natpu murayila avara poyana paathen adukku vandha na vandha inga vijay vandha sthiyam aagakudadu poru varakudadu adu thadukkadhukku vandha rajini ange poirukanga. வேறு ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேசுகிற ஒரு தரங்கிட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை.
5: So what triggered the buzz? Thalaivar's meeting with Stalin soon after the results set the rumor mills churning and adding fuel to the fire, that moment of silence when asked about Vijay as chief minister.
17: சார் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு.
5: கமல்ஹாசன் ஆல்சோ வேஸ் இன், பேக்ஸ் விஜய் பட் கூல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், சேஸ் ஜட்ஜிங் அ கவர்மெண்ட் இன் டேஸ் இஸ் லைக் அஸ்ட்ராலஜி, கால்ஸ் ஃபார் 6 மந்த்ஸ் அண்ட் சேஸ் டோன்ட் ஓவர் ஆர் அண்டர் எஸ்டிமேட் நியூ கமர்ஸ்.
19: ரெண்டு நாள்ல சொல்லக்கூடியது ஜோசியமா தான் இருக்க முடியும், ஆறு நாள்ல சொல்லக்கூடியது அப்படித்தான் இருக்க முடியும், பதினஞ்சு நாள்லயும் அப்படித்தான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு ஆறு மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியல். சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான்.
5: From whispers to clarity, the liver draws the line. No jealousy, no rivalry. But the bigger question now, will this finally put the speculation to rest, or will it only add fresh fuel to the fire? With Pramod Madhav and Ankita Garg, Bureau Report, India Today. Tamil superstar Vijay's dramatic rise to the Chief Minister's chair in Tamil Nadu is sparking political comparisons across the south, especially with the Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. But the Janasena chief has now made it clear that Andhra's political landscape is very different from Tamil Nadu's, and that political success cannot be replicated overnight. Here's a report on the same. Take a look.
6: Vijay's stunning ascent to Tamil Nadu's top job has sent ripples far beyond the state's borders. Amid this political fervour, comparisons have emerged with Andhra Pradesh's superstar and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan. While speaking to his party workers at Jan Sena's headquarters in Mangalagiri, Pawan Kalyan acknowledged the mounting pressure. The power star directly addressed his fans and political supporters who are wondering whether Pawan will immediately achieve the same feat as Vijay. Pawan pointedly reminded supporters that every state has its own distinct political dynamics and that what works in Tamil Nadu doesn't automatically translate to Andhra Pradesh. Solo politics, he made clear, is far easier said than done. Pawan Kalyan used a Telugu idiom to illustrate his point and sought to dismiss any comparisons to the new Tamil Nadu Chief Minister.
20: మన ముఖ్యంగా మొన్న తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా నన్ను చంపేస్తారు అందరం. దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు. అంటే ఎందుకు చెప్తా అంటే దాని పరిస్థితులు వేరు, మన పరిస్థితులు వేరు.
6: Pawan's remarkable political ascent saw him transform from a mass hero to a mass politician. Although he faced early headwinds after founding the Jan Sena party in 2014, he rebounded to achieve a stunning victory in the 2024 elections, assuming office as the Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Therefore, Pawan's legion of fans are unlikely to stop comparing him with Vijay anytime soon. Bureau Report, India Today.
5: On his birthday, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more than two children to tackle falling birth rates. Families may get Rs. 30,000 for a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. While the government says the move targets demographic decline, the opposition has criticized it as a diversionary tactic. Take a look at this report. It was Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu's birthday, but the gift was for the people of the state. Chief Minister Naidu announced major incentives for families with more than two children to tackle declining population growth. Under the proposal, families will get Rs. 30,000 on the birth of a third child and Rs. 40,000 for a fourth child. This announcement was made after the government noticed decline in the young population and the fertility rate is also hitting all-time low of 1.5. It was feared that 23% of the population may be over the age of 60 by 2047. Chief Minister Naidu, like before, said that children should be seen as wealth, not a burden, as he flagged concerns over falling population numbers earlier multiple times. Chief Minister Naidu assured that the government's population management policy will focus on boosting the birth rate. He also added that Anganwadi centres will be strengthened to provide nutritious food for mothers and children through the Women and Child Welfare Department. But while the Chief Minister laid out the details of the plan, the opposition was quick to react. Congress MP Karthi Chidambaram took a swipe at the announcement with just one word: seriously? Meanwhile, YSR Congress called the move an attempt to divert attention from what he termed the failures of the TDP-led government in Andhra Pradesh. From cash incentives to political criticism, Naidu's population push has now triggered a large debate. Can money motivate bigger families? Or is this simply a political headline ahead of a demographic challenge? Bureau Report, India Today. On that note, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and news through the very day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
0: Watching India Today.
21: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
22: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
25: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
26: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
27: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
28: उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आपको किस तरीके से किसानों का आंदोलन
1: दिलशन राहुल गांधी एंड वायनाड एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा फॉर स्किपिंग दी वंदे मातरम डिबेट
2: मुझे क्या मैं तो घूमूंगा

0: Welcome back. We're now getting some breaking news. This is regarding Twisha's alleged dowry and death case. Now, glaring loopholes are being alleged in Twisha's autopsy. What we are learning is that the belt used by Twisha to hang self was not given to the doctors. Belt could have helped doctors to match the ligature marks. Families charge that belt given to Ames after the autopsy was completed. So the belt was in fact given, but only after the autopsy was completed. That should have been given before the autopsy. So the family is now seeking second postmortem of Twisha. 6 days on, remember, viewers, the family has refused to cremate Twisha. They are demanding second autopsy, and dowry has now claimed another daughter's life. That is the question, because there are also charges of dowry against the in-laws of Twisha. So postmortem was conducted without inspection of the hanging belt that Twisha used allegedly to hang herself. And hanging belt was not provided to the Ames doctors during the postmortem, and the family will be filing application for the second postmortem, and they are seeking second postmortem, and they refuse to cremate Twisha's body until the second postmortem is done. And in fact, we're also showing you the chats of Twisha, in which she is telling her friend how she is trapped. And you can see the text that she has sent to her friend telling how she's trapped. She was talking about her in-laws, and now charges against her in-laws are being made by the family of Twisha. And they have made dowry and harassment allegations against the in-laws. Remember, her mother-in-law is a retired judge. Her husband is a lawyer, and her husband is currently absconding. And the mother-in-law had sought an anticipatory bail, and that has been given. And now what we're learning, the latest as far as the autopsy is concerned, that the belt that Twisha allegedly used to hang herself was not given to the doctors before the postmortem was done, and it was only given after the postmortem was already done. My colleague Ravish Pal is now joining us with more details on this. Ravish, hame ye jankari mil rahi hai ki jo belt istemal ki gayi thi Twisha ki taraf se, wo belt di nahi gayi thi. Kisne ye belt nahi di doctors ko, aur ye kiski laparwahi hai ya kiski chal hai? Kya ye intentionally belt doctors ko nahi di gayi thi postmortem ke time pe?
1: देखिए, ये एक सीरियस लैप्स जो है वो नजर आ रहा है. कल ही जो तुषा के फैमिली मेंबर्स थे वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, और तब उन्होंने आरोप भी लगाया था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में काफी लूप होल्स हैं. और कल शाम को जब पुलिस ने ये बेल्ट एम्स को सौंपा, जिससे बताया जा रहा है कि तुषा ने फांसी लगाई थी, तो उसके बाद सवाल खड़े हुए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि जब भी पोस्टमार्टम होता है तो अगर सुसाइड का कोई केस है और अगर किसी ने फांसी लगाई है या किसी ऐसी चीज से सुसाइड किया है, तो उस मटेरियल का उस वक्त वहां होना जरूरी होता है. इसमें होता यह है कि पोस्टमार्टम के समय जिस भी चीज से सुसाइड किया हो, किसी ने फांसी लगाई हो, तो उससे गले पे जो निशान बनते हैं उनको मैच किया जाता है, और जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को भी देखा जाता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बकायदा इसकी डिटेल्स लिखी जाती है. पूरा डिस्क्रिप्शन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है कि किस चीज से फांसी लगाई गई है, और क्या जो पुलिस ने उपलब्ध कराया है वो सामान जिससे फांसी लगाई गई है वो मैच कर रहा है, निशान मैच कर रहे हैं या नहीं. तो ये बताया जा रहा है कि सीरीज लैप्स है. पोस्टमार्टम के समय ये बेल्ट, ये जो मटेरियल था, लिगेचर जिसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ये सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया गया. और तो पुलिस ने कल इसे सौंपा है, और आज शाम तक इसकी रिपोर्ट आ भी जाएगी कि जो गले पे निशान है वो इसी बेल्ट के हैं या नहीं. लेकिन फैमिली का यही आरोप है कि पोस्टमार्टम के लिए जो वो बार बार दबाव बना रहे हैं सेकंड पोस्टमार्टम के लिए, वो यही वजह है कि पहले पोस्टमार्टम में कई लैप्सेस सामने आए हैं. हालांकि पुलिस से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि ये मैंडेटरी नहीं होता है कि ये चीज दी ही जाए, क्योंकि इसके बिना भी कॉज ऑफ डेथ बताई जा सकती है. हालांकि डॉक्टर्स का कहना है, जो तुषा की फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये मटेरियल देना इसलिए जरूरी होता है कि पोस्टमार्टम में एक एक चीज की जब डिटेल आती है तो फिर इसकी भी डिटेल होना बेहद ज्यादा जरूरी है कि जिस चीज से फांसी लगने की बात सामने आ रही है क्या पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने उसे मैच किया या नहीं.
0: जी रवीश, हमारे साथ बने रहिए. वी आर नाउ बीइंग जॉइंड बाय त्विशाज पेरेंट्स ऑन द ब्रॉडकास्ट, एंड they are joining us on the story, and we'll try to understand what are the allegations which are being made. Sir, हमें जानकारी मिल रही है कि ये जो belt थी जिसका allegedly use किया गया था Twisha की तरफ से, ये belt postmortem के लिए नहीं दी गई थी. आप क्या कहना चाहेंगे, और आप आपकी आपका आगे का एक्शन क्या होगा, आपके आगे के स्टेप्स क्या होंगे? हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि आप सेकेंड पोस्टमार्टम चाहते हैं। सर क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? All right, we'll try to check our audio connection with the parents of Twisha, who are joining us live on the broadcast. And this comes amid the serious charges which have been made against the in-laws of Twisha, that they did not provide the belt that was allegedly used by Twisha to hang herself. And that was not provided to the doctors before the postmortem was conducted. And it was only provided after the postmortem was complete. And it could have played a key role in the investigation. And now the parents are alleging that this was done intentionally, and they're also demanding a second post-mortem. We're in fact being joined by Twisha's parents on the broadcast. Sir, hame Twisha ke autopsy ke bare mein ye jankari mil rahi hai ki belt, jo ki ek bahut crucial element tha, wo belt doctors ko nahi di gayi thi post-mortem se pehle, post-mortem ke baad di gayi thi. Is pe aap kya kehna chahenge? Kya ye janbuch ke kiya gaya?
2: जी सर, नमस्कार सभी हमारे सहयोगियों को, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद. हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं. ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं. हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा था. हम जब फाइंडिंग्स हम देख रहे हैं, वो जो मिसमैच हो रही है, बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं जो मिसमैच हो रही हैं और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही है. इसके लिए हमें ये पीएम रिपोर्ट रिलीज करने से पहले बोला गया कि ये जो पीएम रिपोर्ट
0: जी,
2: सॉरी कॉल आ गई थी बाहर से, ये पीएम रिपोर्ट जो है आपको तब मिलेगी जब आप बॉडी ले लेंगे. हमें तरह तरह से परेशान किया गया कि आप अगर ये बॉडी नहीं लेंगे तो आपको पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी. हमने कहा हम अगर पीएम रिपोर्ट ले चाहिए हमें, पहले हम देखेंगे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी हम दूसरी बॉडी ले पाएंगे. बोले नहीं नहीं, ये हमारा कानून नहीं कहता कि पहले आप जो है पीएम रिपोर्ट लीजिए, वो बॉडी लीजिए, उसी के बाद पीएम रिपोर्ट लीजिए. हमने बॉडी नहीं ली, हमने कहा मत दीजिए हमें पीएम रिपोर्ट. हमें जब हमने पीएम रिपोर्ट मिली, उसकी जाँच पड़ताल की, तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग है, उसके अंदर मिसमैच हो रही है सारी डेटा.
0: जी नवनीति शर्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मदर इन लॉ हैं त्विशा की, जो कि रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, वो अपना पावर यूज कर रही हैं इस पूरे केस को और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इस वजह से इतने लूप होल्स सामने आ रहे हैं?
2: जी, रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं. सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से. और भी जुडिशरी में लोग हैं जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया, वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है. ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है. ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा? हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है.
0: जी नवनीति शर्मा जी, मैं त्विशा की मदर रेखा शर्मा जी से भी बात करना चाहूंगी. रेखा जी, आपकी आखिरी बात त्विशा से कब हुई थी? क्या त्विशा ने आपको बताया कि क्या कुछ त्विशा को झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ सहना पड़ रहा है अपने ससुराल में? क्या कभी इस तरीके का जो भी टॉर्चर झेलना पड़ता था, इस बारे में कोई बातचीत हुई थी?
3: हाँ जी, 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था. वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई मेरी बेटी की. फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था. तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया बिल्कुल गवार है, तू गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
0: जी रेखा शर्मा जी, क्या आप लोगों ने एक बार ससुराल जाके मैटर सॉल्व करने की या ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की हो?
3: हम एक बार गए थे, जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ये फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा, तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
0: जी
3: फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
0: जी रेखा जी, हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, आपकी बेटी को इंसाफ मिले, वी स्टैंड विद यू इन दिस फाइट टू गेट जस्टिस टू आवर डॉटर, दिस इज अलेजेड डाउरी एंड हैरेसमेंट केस। एंड नवनिधि जी, एक और सवाल जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो हस्बैंड थे त्विशा के, वो एब्सकॉन्डिंग है, उनका कोई अता पता नहीं है, इतने दिन हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, व्हाई इज ही स्टिल एब्सकॉन्डिंग?
2: वो यही तो सवाल है, यही तो हमारी लड़ाई है कि आज कितने समय हो गया इन हीनियस क्राइम में तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं, और ये सारा जो केस जिस बिना पर चलाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर जगह हड़डल्स आ रही हैं हर तरह से। आज हम पीएम रिपोर्ट के लिए पहले, PM2 के लिए पहले कमिश्नर साहब ने ओके कर दिया था, अप्रूवल दे दिया था एक दिन पहले, बाद में बोला गया कि हमें इसकी कानून की जानकारी नहीं थी, ये आपको जुडिशियल कोर्ट से मिलेगा। अब जुडिशियल कोर्ट में उसी दिन जो है एंटिसिपेटरी बेल की इन्होंने फाइल कर रखी है। दूसरा, हमारे PM2 की भी अपील है, तो ये डायरी जो पुलिस की डायरी है वो एक ही जगह जा सकती है, कहाँ कहाँ जाएगी, अब कब तक जो है PM2 की परमिशन मिलेगी और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
0: जी नवनिधि जी, रेखा जी, हमारी सहानुभूति, हमारी संवेदना आपके साथ है, हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले, और हम इस स्टोरी पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट हम अपने व्यूवर्स को पहुंचाते रहेंगे और आपके साथ खड़े हैं, और हम चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और त्विशा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले।
3: मैडम एम्स में भी उन लोगों के लोग बैठे हुए हैं, सब गिरीवाला सिंह के, सब जगह उन्हीं का ही राज है, यहाँ पर हमको न्याय नहीं मिलेगा। जिस दिन मेरी बेटी 12 तारीख को खत्म हुई है, तो रात को हम लोग वहां से आ रहे हैं, वहां पर मेरे रिलेटिव से, हमने यहाँ पे भोपाल में रहते, हमने उनको भेजा, फिर वो घर पे भी गए उनको पुलिस को लेके कि भाई जहाँ पे वो खत्म जिस जहाँ पर मारा है वो जगह सील किया जाए, तो वहां पर गए हैं, तो बोले गिरीवाला सिंह बोल रही है मेरी बेटी को तो एम्स में छोड़ दिया, फिर वो घर पे आ गई है, बोले जल्दी जल्दी चेक कीजिए और जाइए यहाँ से, हमें रेस्ट करना है, तब किसी की बेटी वहां पे हॉस्पिटल में पड़ी अकेली लावारिस, वो उनको रेस्ट करना है।
0: जी रेखा जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, आई एम ऑल्सो अ डॉटर एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द ग्रीफ एंड पेन यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ इस लड़ाई में, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट दैट एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट द इन लॉज, इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट थरली एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज इन दिस केस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मिस्टर नवनिधि शर्मा एंड रेखा शर्मा जी। And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today.

0: राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है, और ये भी हो गया कि जो लोग दोषी उनको सख्त से सजा मिलेगी, और ये भी कह दिया कि आने वाले जितने एग्जाम हैं अब के बाद वह कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, हार्ड कॉपीज नहीं होंगी।
1: राहुल गांधी किस मुद्दे पे पीएम को अटैक नहीं करते? हर मुद्दे पे तो पीएम को ही अटैक करते हैं। राहुल गांधी एक बहुत आसान तरीका है प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरीके की बात करना, उनसे सवाल पूछना, जो उनका कर्तव्य रहा है उनकी सरकारों के वक्त से लेकर अब तक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। उन्होंने अगर कोई एक काम किया है तो बताइए।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Let's get you some more news coming in. And these are tragic developments, if you're learning, as far as Noida suicide case is concerned. This is another suicide due to dowry harassment. A woman jumps from the roof of a building in Greater Noida. Horrific details emerging at this point in time. Now, the charge was that the in-laws harassed Deepika over dowry. Cops have arrested the husband in question here. Ritik is the name of the husband. I understand the father-in-law goes by the name of one Manoj. Deepika and Ritik got married just over a year ago. Pictures from their wedding on your screens, viewers, at this point in time. They got married in the month of December, which is just about 6 months ago. According to the family, they had already given dowry during the wedding. And the family says that gold worth 50 lakh rupees was given along with top model of Mahindra Scorpio. And 5 lakh rupees in cash. These are astounding details that we have at this point in time. And the family of the victim here, the deceased woman, alleged that the last 6 months they started demanding more dowry. In-laws were demanding a Fortuner vehicle and more cash and were building pressure on the victim. It's extremely tragic how a young woman has died. Take a look at these images coming in of the victim. Has taken a life. On the right side of your screen, images are from the moment the wedding took place. A Varmala function there on your screens at this point in time.
1: Mritka ka panchayatnama aur postmortem ki karyavahi karai ja rahi hai. Mritka ke parijanon ki tehreek par susangat dharaon mein abhiyog panjikrit kar liya gaya hai. Aur इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही
0: है. I'm going straight across to my colleague Anshul, getting in more details on that story. This is extremely tragic. Give us a sense of what the family is also saying. I mean, at the end of the day, dowry is banned in the country. It's illegal as well. The family has also encouraged this, isn't it? The family of the victim.
2: Oh, well, definitely. At this point in time, though, the police is saying that the woman fell from the roof of the house and that could be the reason for the death. But however, the family over here is very clearly claiming that this is not a case of suicide, but this is a very well pre-planned murder, as there are many injuries that are on the body of the victim. At this point in time, the post-mortem of the deceased is happening right behind me. This is Sector 94 of Noida, the post-mortem house where the post-mortem is underway. And once that happens, it will be clear that what was the exact cause of death. I'll speak to the family members and try to get a sense as to what transpired and how was she being harassed for the last 6 months since the time that her in-laws were demanding more and more dowry from her. He's the uncle of the victim. Sir, aap log shaadi hui kuch mahine pehle hi shaadi hui thi.
3: Deirh
2: saal pehle hi shaadi hui thi. Kya mamla hua aur kya jo ladki thi wo aapko batati thi ki kis tarike se unke jo saas sasur hain unke saath bartav kar rahe hain?
3: Sir, humne jo apni beti ki jo shaadi kari thi, matlab ek samaj ke hisab se aur apni haisiyat ke hisab se matlab bahut best kari thi. Us time bhi humne apni haisiyat se bhi zyada cheeze kari thi. Theek hai, lekin wo hota hai na ki matlab unki to wo bhari nahi rahi thi. इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी सुंदर बच्ची थी कि मतलब कोई ऐसे भी ले जाता, मतलब इतनी सुंदर बेटी थी हमारी. लेकिन मेरे भाई कल मतलब वहां गए थे इस विषय में समझाने के लिए, बिल्कुल बातचीत हुई, अच्छे से सब कुछ हुआ. लेकिन मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया, जैसे वो वहां से विदा होकर घर पे आए, आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बेटी मतलब गिर गई है. तो भाई ने मतलब पूछा कि कहाँ से गिर गई है, कैसे गिर गई, तो कोई जवाब नहीं दिया उस टाइम पे कि मतलब शारदा हॉस्पिटल आप आ जाइए. तो जैसे अब गिरने का क्या होता है, छोटी मोटी चोट होगी, हमें भी चलो कोई बात नहीं. लेकिन वहां जाके देखा तो हमारी बेटी मृत पड़ी हुई है, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे निशान है मार पीट के हर चीज के, और उसको इनफेक्ट उसके पेट में मतलब या तो कोई बुलेट का मतलब घाव है, वो इतना मोटा घाव है, और या मतलब कोई स्क्रू वगैरह कोई सरिया वगैरह मतलब उससे मारा गया है उसको. तो मतलब उसके पूरी बॉडी पे निशान है. तो ये मतलब बच्चा अपने आप तो कैसे कर लेगा, ये तो कोई मतलब है ही नहीं किसी तरह से. वो बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर है, और उसको उसके बाद में मार पीट के छत से फेंका गया है ताकि इसको मतलब एक घटना बता दिया जाए कि भाई एक्सीडेंट हुआ है.
2: पिछले कितने दिनों से आपकी बेटी को ये परेशान कर रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे?
3: मतलब लमसम ये 7-8 महीने से ये चीजें चल रही थी। हम देखो एक समाज में रहने के नाते ना लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं हर चीज को जब तक चीजें हो जाएं। ऐसा नहीं है कि एकदम से चीजें स्टेप ले लिया जाता है, लेकिन वो होता है ना कि मतलब किसी को रुकना नहीं है तो रुकना ही नहीं है फिर। तो ये चीजें बढ़ती चलेगी। अभी वो एक स्कूल मतलब बना रहा है, तो उसमें वो अवैध जमीन पे भी बना रहा है, ठीक है। अब उसमें उसको फंड की जरूरत पड़ रही थी, तो वो दिन रात वही बेटी के साथ में चीजें मतलब चल रही थी कि भाई ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी विषय में भाई को भी मतलब बुलाया गया था। तो देखो इतना तो हमारी हैसियत है नहीं कि हम रोज रोज ये चीजें करेंगे।
2: ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है उसमें पुलिस का भी ये कहना है कि छत से कूद के जान दी है, तो आप मानते हैं इस बात को या कहीं ना कहीं लगता है कि ये
3: अभी तो पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, तो पुलिस ऐसे मतलब किसी को रिपोर्ट कैसे दे देगी कि भाई वो छत से गिर के उसने सुसाइड किया है? अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, जो उसको चोट के निशान है अभी तो पुलिस भी हाँ ये देखो ये घाव है पूरा बड़ा।
2: आपकी भी बात हुई होगी पुलिस से, क्या रवैया रहा है प्रशासन का अभी तक और इंसाफ मिलने की उम्मीद दिख रही है कहीं?
4: जी पुलिस ने तो भी हमसे मिले बिना, हमारा कोई व्यू लिए बिना पहले ही बोल दिया है कि छत से जो उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो व्यक्ति है मनोज प्रधान, जो लड़की के ससुर लगते हैं, ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और भूमाफिया भी है। इसके खिलाफ पहले ही दर्जनों मुकदमे वहां के जो लोकल थाना है उसमें दर्ज है। तो ये तो जांच को पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा और हो सकता है इसने वहां पे लोकल चौकी या थाना स्तर पे पैसे भी पहुंचा दिए हों।
2: ये जो पूरी घटना हुई, 6 महीने से बेटी को परेशान कर रहे थे, तो क्या मारपीट भी पहले भी करते थे या ऐसी भी बातें आपने सुनी कभी अपनी बेटी के मुंह से?
4: दरअसल बिटिया ने कभी पहले हमें इस बारे में अवगत नहीं कराया, उसे लगा कि शायद छोटी मोटी चीजें हैं ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। अभी कुछ टाइम पहले से उसने बताना शुरू किया। इसी क्रम में कल जो लड़की के पापा हैं वो कल मिलने भी गए थे अपनी बिटिया से और जाकर के चीजों को सही करके आए कि आराम से चीजें ठीक हो जाएंगी। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर ना बिगड़े ना उजड़े, तो इसी प्रयास में वो लोग जाकर के आराम से शांति से बात करके आए थे। लेकिन घर लौटने के आधे घंटे के बाद ही उनके पास वहां से फोन आ गया कि भाई उन्हें वो गिर गई हैं। तो जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में वहां मृतदेह थी लड़की की और उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान है। चोटों के निशान देख के ही आप बता सकते हो कि बेटी के साथ में कितनी ज्यादती की गई है, कितना बुरा हाल किया गया है। उसके ऊपर कट के निशान है, कहीं पे पेचकस के निशान है या कहीं बुलेट का निशान भी हो सकता है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद में पता चल जाएगा। अभी तो हम सारे लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे पता नहीं कैसी व्यवस्था है कि अभी तक कोई पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर नहीं आया। पुलिस भी यहाँ पे नहीं आई थी, पुलिस भी आप लोगों के आने के बाद में यहाँ पे आई है।
2: आज से कड़ी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, शादी के टाइम भी दहेज दिया गया था या गिफ्ट दिए गए थे, क्या क्या दिया था और उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा गया?
4: जी शादी के समय पे हर परिवार अपनी स्थिति के अनुसार अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पे देता है। हम उसे एक गिफ्ट ही कहेंगे कि भाई अपनी बेटी के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से सम्मान के साथ में विदा करूं। तो उस टाइम पे भी शादी में करीब 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा ही होगा, जिसमें कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी गई थी, 50-60 लाख रुपए का सोना भी दिया गया था, बाकी घर का पूरा सामान भी दिया गया था, सही। और बाकी जो और हमारी जो और चीजें हैं जिनमें जैसे कि लगन सगाई वगैरह उसमें भी पैसा दिया जाता है, हाँ 10 लाख के आसपास अलग से वो भी खर्च हुआ था। तो 1 करोड़ से ऊपर की ही शादी बैठी थी, अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च किया था। सक्षम परिवार है तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं थी उस टाइम पर।
2: ये लड़ाई आगे कैसे ले जाएंगे, कैसे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं आप?
4: इंसाफ की हमारी पुलिस प्रशासन से और प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे भी हमारी यही विनती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, इसमें मामले को प्रभावित ना होने दिया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि इसमें ये राजनीतिक
0: द किन ऑफ द डिसीज्ड हियर ऑन योर स्क्रीन्स माय कॉलीग अंशुल इन कन्वर्सेशन विद द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम एक्सट्रीमली ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस and the relatives also talking about the fact that they wanted to give what they had to give to their daughter and this was an expensive wedding cost up to 1 crore rupees more. News coming in, something that the relative also spoke about, multiple wounds on Deepika's body on camera, deep cut wounds on victim's leg on camera again, multiple bruises on Deepika's arms, wounds and bruises on Deepika's face and torso. How did that appear? If at all she had a fall is the big question here. Something that the relatives are also asking. The woman allegedly jumped from the roof of Greater Noida building. Multiple wounds also on Deepika's body. This is the victim allegedly of dowry harassment is what we are learning. Not one, but in recent times we've seen 2 cases emerging from Noida. This one from Greater Noida, where a young woman, viewers, has died allegedly because of harassment. This is the year 2026. So dowry has clearly been outlawed in the country, but this continues to be a huge menace. This was a family that paid up to 1 crore rupees, is what the relative is now saying. We'll also try to get in a sense from our reporters on what the other family members, including the mother and the father of the victim, are saying about continuous harassment that the victim allegedly was facing from Hrithik and his father, that is the victim's father-in-law, Manoj. The police for the time being have arrested both the father and son, is what we know at this point in time. What about the continuous harassment? Were there any police complaints lodged previously? These are details that are only emerging at this point in time of a young woman who has died allegedly of suicide. We don't know just yet, but this is what it looks like prima facie. But this is dowry harassment, is what is becoming extremely clear at this point in time. Incident from Greater Noida, and the victim was married just 6 months ago. Well, we will continue to get you more details on that tragic incident that we're reporting from the National Capital Region. For the moment, it's a wrap on this edition. News continues with me right here on the other side of this quick commercial break.
5: You are watching India Today.
6: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices, from your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: Reporting on another suspicious death in the National Capital Region, we told you at the outset about this dowry harassment where a woman has jumped from the roof of the Greater Noida building. We are learning, these are details emerging at this point in time, the charge is that in-laws harassed Deepika over dowry. Cops have arrested husband Hrithik, father-in-law Manoj. Deepika and Hrithik got married just over a year ago. In fact, less than a year ago is what we're learning. According to the family, they had already given dowry during the wedding. Family says gold worth 50 lakh was given along with top model of a Mahindra Scorpio car and 5 lakh rupees in cash. Family of the deceased alleged that since the last 6 months, they started demanding more dowry. In-laws were demanding a Fortuner vehicle. More cash were building pressure on her. Multiple wounds on Deepika's body was found. On camera, deep cut wounds on Deepika's leg. Multiple bruises on arms. Wounds, bruises on face, torso. Woman jumped from the roof of the Greater Noida building is what we are learning. This is a shocking, shocking incident that we're reporting on from the National Capital Region.
1: सर आप लोग शादी हुई कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी
2: डेढ़
1: साल पहले ही शादी हुई थी क्या मामला हुआ और क्या जो लड़की थी वो आपको बताती थी कि किस तरीके से उनके जो सास ससुर हैं उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं
2: सर हमने जो अपनी बेटी की जो शादी करी थी मतलब एक समाज के हिसाब से और अपनी हैसियत के हिसाब से मतलब बहुत बेस्ट करी थी उस टाइम भी हमने अपनी हैसियत से भी ज्यादा चीजें करी थी ठीक है लेकिन वो होता है ना कि मतलब उनकी तो वो भरी नहीं रही थी इतनी प्यारी बच्ची थी इतनी सुंदर बच्ची थी कि मतलब कोई ऐसे भी ले जाता मतलब इतनी सुंदर बेटी थी हमारी लेकिन मेरे भाई कल मतलब वहाँ गए थे इस विषय में समझाने के लिए बिल्कुल बातचीत हुई अच्छे से सब कुछ हुआ लेकिन मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया जैसे वो वहां से विदा होकर घर पे आए आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बेटी मतलब गिर गई है तो भाई ने मतलब पूछा कि कहाँ से गिर गई है कैसे गिर गई तो कोई जवाब नहीं दिया उस टाइम पे कि मतलब शारदा हॉस्पिटल आप आ जाइए तो जैसे अब गिरने का क्या होता है छोटी मोटी चोट होगी हमें भी चलो कोई बात नहीं लेकिन वहां जाके देखा तो हमारी बेटी मृत पड़ी हुई है मतलब उसकी पूरी बॉडी पे निशान है मार पीट के हर चीज के और उसको इनफेक्ट उसके पेट में मतलब या तो कोई बुलेट का मतलब घाव है वो इतना मोटा घाव है और या मतलब कोई स्क्रू वगैरह कोई सरिया वगैरह मतलब उससे मारा गया है उसको तो मतलब उसके पूरी बॉडी पे निशान है तो ये मतलब बच्चा अपने आप तो कैसे कर लेगा ये तो कोई मतलब है ही नहीं किसी तरह से वो बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर है और उसको उसके बाद में मार पीट के छत से फेंका गया है ताकि इसको मतलब एक घटना बता दिया जाए कि भाई एक्सीडेंट हुआ है
1: पिछले कितने दिनों से आपकी बेटी को ये परेशान कर रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे
2: मतलब लमसम ये 7-8 महीने से ये चीजें चल रही थी हम देखो एक समाज में रहने के नाते ना लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं हर चीज को जब तक चीजें हो जाएं ऐसा नहीं है कि एकदम से चीजें स्टेप ले लिया जाता है लेकिन वो होता है ना कि मतलब किसी को रुकना नहीं है तो रुकना ही नहीं है फिर तो ये चीजें बढ़ती चलेगी अभी वो एक अभी एक स्कूल मतलब बना रहा है तो उसमें वो अवैध जमीन पे भी बना रहा है ठीक है अब उसमें उसको फंड की जरूरत पड़ रही थी तो वो दिन रात वही बेटी के साथ में चीजें मतलब चल रही थी कि भाई ये सब करना पड़ेगा
3: पुलिस ने तो भी हमसे मिले बिना हमारा कोई व्यू लिए बिना पहले ही बोल दिया है कि छत से जो उन्होंने आत्महत्या की है जबकि ऐसा नहीं है दरअसल ये जो व्यक्ति है मनोज प्रधान जो लड़की के ससुर लगते हैं ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और भूमाफिया भी है इसके खिलाफ पहले ही दर्जनों मुकदमे वहां के जो लोकल थाना है उसमें दर्ज है तो ये तो जांच को पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा और हो सकता है इसने वहां पे लोकल चौकी या थाना स्तर पे पैसे भी पहुंचा दिए हों
1: ये जो पूरी घटना हुई 6 महीने से बेटी को परेशान कर रहे थे तो क्या मारपीट भी पहले भी करते थे या ऐसी भी बातें आपने सुनी कभी अपनी बेटी के मुंह से
3: दरअसल बिटिया ने कभी पहले हमें इस बारे में अवगत नहीं कराया उसे लगा कि शायद छोटी मोटी चीजें हैं ऐसे ही ठीक हो जाएंगी अभी कुछ टाइम पहले से उसने बताना शुरू किया इसी क्रम में कल जो लड़की के पापा हैं वो कल मिलने भी गए थे अपनी बिटिया से और जाकर के चीजों को सही करके आए कि आराम से चीजें ठीक हो जाएंगी हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर ना बिगड़े ना उजड़े तो इसी प्रयास में वो लोग जाकर के आराम से शांति से बात करके आए थे लेकिन घर लौटने के आधे घंटे के बाद ही उनके पास वहां से फोन आ गया कि भाई उन्हें वो गिर गई हैं तो जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में वहां मृतदेह थी लड़की की और उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान है। चोटों के निशान देख के आप बता सकते हो कि बेटी के साथ में कितनी ज्यादती की गई है, कितना बुरा हाल किया गया है। उसके ऊपर कट के निशान है, कहीं पे पेचकस के निशान है या कहीं बुलेट का निशान भी हो सकता है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद में पता चल जाएगा। अभी तो हम सारे लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे पता नहीं कैसी व्यवस्था है कि अभी तक कोई पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर नहीं आया। पुलिस भी यहाँ पे नहीं आई थी, पुलिस भी आप लोगों के आने के बाद में यहाँ पे आई है।
4: मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
0: Colleague Anshul is getting in more details on that story, tracking that for us from Greater Noida. You know, Anshul, I want to ask you, what is the family now saying about any previous complaints? And for how long did the victim suffer before prima facie taking her own life? Also, I'd like to add that this matter is under investigation on whether this was suicide or there could be more to this. What are the police now saying? What can you tell us?
1: Well, yes, the police has taken up this entire investigation, and at this point in time, the prima facie evidence that they have got, in fact, we heard in that statement as well, that initially the police is saying that the woman actually jumped from the rooftop, but this is something that is not being taken by the family absolutely. I am being joined by the father of the victim. He was the last person who had met her, and just half an hour after he had met her and he had met her in-laws, he got the news that his daughter has died after she had fallen from the roof. So we'll speak to him and we'll try to get a sense as to what transpired at that point. Sir, कल आपकी मुलाकात भी हुई अपनी बेटी के ससुराल वालों से, क्या बात हुई थी और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई और कब से आपकी बेटी को ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे?
5: देखो, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसमें जो कम से कम 10 महीने हो लिए हैं और 10 महीने पहले से ये लड़की को परेशान कर रहे थे। बाकी कल मैं वहाँ पे गया भी था और वहाँ पे जो उसने मुझे बताई तो मैंने उनसे आपस में बात करके उनसे जो भाई इसे ऐसे मत बढ़ाओ, ज्यादा बात है तो उसे दबाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा मत करो। तो वहां से मैं जैसे ही घर निकल गया, आधे घंटे बाद मुझे कॉल जाती है, हमारा जो समधी मनोज है उसकी कॉल जाती है कि भाई दीपू जो है वो गिर गई है। तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई सीढ़ी से गिर गई है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिरी है दीपिका जो? तो उन्होंने बताया कि वो छत से गिर गई है। तो जब छत से गिर गई है तो बोले और हम जो है उसे वहां पे लेके जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल में। तो हमने जो मेरा छोटा भाई था, अपने बेटे को और अपने छोटे भाई को और अपनी मिसिज को लेके हम गाड़ी से जैसे ही शारदा पहुंचते हैं तो हमारी बेटी जो वो
6: बता रहे हिम्मत
5: हमारी बेटी मृत पाई जाती है। चीज का ज्यादा बताना
1: बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन अभी आगे इंसाफ कैसे मांगेंगे, जहां एक तरफ उस परिवार का भी कहना, जैसा आपने बताया कि छत से गिर करके मौत हुई है, तो आपको लगता है कि छत से
5: कैसे गिर जाएगी बेटी? किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गिरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा? छत से आप तो नहीं गिरे, मैं तो नहीं गिरा, कोई और तो नहीं गिरा, छत से कैसे गिर जाएगी बेटी?
1: शरीर पर
5: इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो में फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
1: अभी प्रशासन से क्या मांग रहेगी, किस तरह की सजा? दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने ससुर और उसके पति को अरेस्ट कर लिया है, तो ये कार्रवाई से संतुष्ट है?
5: अभी तो और भी रह रहे हैं उसमें, ससुर सर उससे पति से क्या चलेगा, ननंद भी है उसकी और भी है, सास भी है, जो दुखी ज्यादा करते थे वो तो है। सासू तो एक बार हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आई, जिसकी बहू एक्सपायर हो जाए वो एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं आ सकती क्या?
1: कब से, मतलब पहले भी आपको कभी ऐसा पता लगा कि कहीं ना?
5: सारा प्री प्लानिंग थी और वो उन्होंने कर दिया। अब तो प्रशासन से बस हाथ जोड़ के ये है कि लड़के का तो एनकाउंटर हो और उन्हें कठिन से कठिन जो भी सजा मिले वो।
1: आपकी बेटी के साथ पहले भी ससुराल वाले मारपीट करते थे, ऐसा भी आपने?
5: मारपीट और उसे वो करते रहते थे, बीच बीच में कई बार आए भी, हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ना जाना आगे चल जाए, बाकी उस चीज का वो नहीं हो पाया आगे।
1: आपने शादी भी करवाई थी, उसमें भी काफी गिफ्ट दिया था, उसके बाद भी किस तरीके से प्रताड़ना करे थे, क्या क्या दिया था आपने शादी में?
5: शादी में तो शादी अच्छी करी थी जी, जैसे हम मीडियम लोग हैं हमने अच्छी शादी करी थी अपनी हैसियत के हिसाब से। अब हमें क्या पता कि बहुत ऊंचे आदमी से मिल गए, हमें तो फॉर्चूनर भी देनी है या 51 लाख रुपए देने, हमारी हैसियत नहीं थी। हमने तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, 5.5 लाख हमने केस दिया था, 2.5 लाख हमने लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई में दिए थे, और हमने तो 20-25 तो जेंट्स अंगूठी दिए, गोल्ड भी दिया है, चांदी भी दिया है, हमने तो अपनी ओर से तो कमी करी नहीं है।
1: अभी उम्मीद लग रही है प्रशासन से, जिस तरीके का आपको रिस्पांस मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा
5: है, प्रशासन क्या करता है जी वो तो देखते हैं। अभी तो कुछ
1: एफआईआर में भी हमने देखा कि एफआईआर में जो मर्डर की धाराएं हैं वो मर्डर की धाराएं नहीं लगाई है पुलिस ने, इसके पीछे क्या वजह सोच
5: इसके पीछे? तो वो एक थोड़ा वैसा आदमी है, घूमा पिया है, पुलिस से मिला जुला है, और उसके केस भी आप जो थाने में जाके चेक कर सकते हैं, कम से कम 40 केस मिलेंगे हर महीने, हर 20 दिन 10 दिन में केस है उस पे, पता कर सकते हैं।
1: सो एज यू हर्ड दिस नेहा, द एंटायर फैमिली इज वेरी वेरी डिस्टर्बड एंड दे आर वेरी क्लियरली स्टेटिंग दिस एंटायर फैक्ट दैट समवेयर और द अदर दिस इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड बट इट सीम्स लाइक अ क्लियर केस ऑफ मर्डर एज टू हाउ देर आर सो मेनी इंजरीज दैट आर ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम। इन फैक्ट वी हैव सीन दोज फोटोज ओवर हियर एंड दोज फोटोज आर सो डिस्टर्बिंग दैट वी कैनॉट इवन शेयर दैट विद आवर व्यूअर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। देर आर सेवरल कट्स ऑन द बॉडी, देर आर सेवरल मार्क्स ऑन द बॉडी एज वेल, सो डेफिनेटली इट इज सीमिंग लाइक प्रेमा फसाई दैट शी वॉज टॉर्चर्ड before her death as well, but now as the postmortem has just started, things would be abundantly clear as to how many pre-mortem injuries are on the body and what was the exact cause of death. Was it due to falling from the roof or was it due to the torture that she had to undergo before she lost her life as well? She was just 24 years old, just got married a year and a half ago, and the marriage in which the entire family allegedly harassed her is something that is very, very shocking, and definitely
0: that's right.
1: the heads of the entire society should hang in shame.
0: Absolutely,
1: the manner in which this young girl had to lose her life because there were a few people who were very, very greedy.
0: Yes, you know, Anshul, you did tell me the pictures you saw were so disturbing. Anshul, reporting on this story, this has shaken all of us on how this has happened. And not too far away in Noida, in this very close from where we are at this point in time, it's unbelievable that young women are having to die like this. We also, in fact, had a word with Deepika's aunt, listening to what she said.
7: जा रहा था अब फॉर्चुनर गाड़ी 50 लाख रुपए लेके आ, और नहीं लेके आएगी तो तुझे जान से मारेंगे। जब उन्होंने रात उसको मार दिया था, जब हमारे पास उन्होंने फोन करा था, जब हमारे पास फोन करा था तो थर्ड हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके, शारदा में क्यों लेके गए थे? जब लेके गए थे शारदा में तो हमें बताते ना हम शारदा में लेके जा रहे, हम तो अपने काम में लग गए, हम तो अपनी बेटी के उसमें लग गए, और उन्होंने चाल चल दी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी, तो क्यों करी थी जब उन्होंने मारी नहीं थी? उन्होंने चक्कुओं से गूंद गूंद के मारा, चक्कुओं से गूंद गूंद के 50 लाख रुपए लेके और फॉर्चुनर गाड़ी लेके आने, तुझे खत्म करेंगे। सासू ने भी, आदमी ने भी, सुसरे ने भी, सबने उसको टॉर्चर करा और ऊपर से उसे फेंक दिया तीसरी मंजिल से। जब उसे फेंक दिया, जब हमारे घर फोन करा 1 बजे कहा जाओ तुम्हारी बेटी गिर गई है जीने से, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के बाद भी वो भाग गए। हमें खून के बदले खून चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, जैसे हमारी बेटी मारी है हमें भी इंसाफ चाहिए आज।
0: Anshul, this is the aggrieved family right now, but what's also really equally shocking is, and this is a deeper menace that I'm asking you of, is the manner in which families have normalized, and in fact it continues to be normalized, this business of giving dowry, tolerating continuous demands. This just doesn't end, isn't it, Anshul?
1: Well, definitely, this is a part of the culture, and specifically in several communities, the more dowry that you give, the more people would be impressed, the more good would be thought about you, and that is the reason why we are seeing that one after the other such cases are coming up, that even in 2026 families are ready to pay hefty amounts in dowry, hefty amounts while they are gifting to the other family, and that is something that is a massive menace. Even after there are stringent laws against taking and giving dowry or even demanding dowry, still the manner in which this is prevalent, this is something that is very, very shocking, and definitely the authorities actually need to give a rethink on how they can actually implement these laws on the ground more, and how there could be more awareness amongst the people, because these are people from small villages over here in Noida. They have been living over here for many, many decades, many, many years, many generations, and with every generation, this is a culture that is being followed, where dowry is being given on marriages, as we heard over here as well, that more than 1 crore was spent on the marriage of the girl, and even after that, the family or her in-laws continued to demand more money. They wanted a new car, they wanted 50 lakh rupees in cash, and that is something that eventually led to the sad and tragic death of Deepika, who was just 24 years old and was just starting off with her life. So definitely a lot of questioning or a lot of thinking that needs to be done as to how we as a society can actually do away with this massive, massive sin of dowry, and this impression that people have on their mind that
0: than anything else, proving a point to your relatives and all of these things than anything else. Unfortunately, dowry demands continue. Parents continue to give dowry. Others continue to receive dowry. Until the time that happens, these deaths will also continue. No surprises, but it doesn't mean that this isn't distressing. It's extremely distressing, and this really should stop. I'm going to leave it there for the moment. Anshul getting us up to speed with those details. We'll keep coming back to you for more on the investigations. Let's shift focus to more news coming in. A sensational claim that was made by Twisha's mother-in-law. Mother-in-law says Twisha used to take drugs. Twisha's hands trembled without drugs. Says Twisha wasn't able to adjust to family life. Claims she would get irritable without drugs. These are charges that are being made against a person who has died. Now, a mother-in-law making these sensational revelations. We're getting you details of another instance that we're reporting on, of a suicide matter that is being reported of a girl originally from Noida, but otherwise in Bhopal, where the mother-in-law of the victim here has made some startling revelations, saying that her daughter-in-law was a drug addict. She wasn't able to adjust to family life as it wasn't to drugs. This is Twisha Sharma that we're reporting on, the death of Twisha Sharma, wherein serious allegations have been made against the mother-in-law, even as the family continues to await justice. A young woman who had also sent distressed chats to her friend before she died, before she was found dead in Bhopal, had spoken about how she was trapped and that she can't even talk. Now the mother-in-law goes on to make these startling allegations about her daughter-in-law, who's dead, being a drug addict. Ravish tracking that story for us. Ravish, take us to the very latest as far as the investigations in this matter is concerned. Startling revelations by the mother-in-law. What impact would it have on the case?
8: हम कह सकते हैं कि देखिए ये पहला एक रिएक्शन जो है वो इन-लॉज की तरफ से सामने आया है. दरअसल ये बेल ऑर्डर जो जो मदर इन-लॉ हैं ट्विशा की, गिरिबाला सिंह, उन्होंने जब ये बेल एप्लीकेशन फाइल की थी तो उसमें उन्होंने ये तमाम बातें लिखी है अपने स्टेटमेंट में. गिरिबाला सिंह ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि ट्विशा जो है वो ड्रग्स लेती थी, और अगर वो ड्रग्स नहीं लेती थी तो उसके हाथ जो है वो कांपते थे, वाइब्रेट करते थे अगर वो लंबे समय तक ड्रग्स नहीं लेती थी. ये सीरियस एलिगेशन है जो कि बाकायदा जज के सामने बेल एप्लीकेशन को प्रोड्यूस करते टाइम यहाँ पे गिरिबाला सिंह ने लगाए हैं अपनी बहू ट्विशा के ऊपर. और इसके साथ ही ये भी आरोप लगाए हैं कि ट्विशा जो है उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड हो गया था जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद से ही उसने जो गिरिबाला सिंह है यानी जो मदर इन लॉ है ट्विशा की, उनसे और उनके बेटे यानी ट्विशा के हस्बैंड समर्थ, इनके साथ जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था ट्विशा के प्रेग्नेंट होने के बाद. और इस बेल एप्लीकेशन में बाकायदा गिरिबाला सिंह ने, जो कि ट्विशा की मदर इन लॉ है, उन्होंने ये भी लिखा है कि साइकाइट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था ट्विशा का, और जब इन्होंने बेल एप्लीकेशन प्रोड्यूस की है तो उसके साथ ही साइकाइट्रिस्ट को जो उन्होंने दिखाया है वो जो डॉक्टर का पर्चा होता है वो भी उन्होंने एप्लीकेशन के साथ लगाया था. आरोप जो लग रहे हैं ट्विशा के परिवार की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं इन लॉस के ऊपर कि वो उन्होंने दहेज लिया, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, तो इसका भी जवाब उस बेल एप्लीकेशन में दिया है, और उसमें बताया है कि उल्टा उनकी तरफ से ट्विशा के खाते में लाखों रुपए डाले गए और कभी उससे कोई वजह नहीं पूछी गई. तो अब ये जो मामला है ये धीरे धीरे और ज्यादा पेचीदा होता यहाँ पे दिख रहा है. एक तरफ ट्विशा है जिसकी मौत हो चुकी है, परिवार का आरोप है कि उसकी मौत से लेकर के उसकी इन्वेस्टिगेशन तक पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है इन लॉस का, उसकी पूरी फैमिली का। तो वही दूसरी तरफ अब इन लॉस की तरफ से भी जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी गिरिबाला सिंह के लिए, उसमें जो बातें आई हैं उसने त्रिशा की फैमिली के ऊपर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एलिगेशन लगाए कि त्रिशा एक ड्रग एडिक्ट थी, साउथ की फिल्मों में वो काम कर चुकी थी, मॉडल थी, एड्स में उसने काम किया था और वो एक परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, एक वाइफ के तौर पर एक फैमिली में वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। ये तमाम एलिगेशन उस बेल एप्लीकेशन में इन लॉस की तरफ से, गिरिबाला सिंह की तरफ से, जो मदर इन लॉ है त्रिशा की, उन्होंने लगाए हैं। तो आज मंडे है, मंडे को त्रिशा की फैमिली आने वाली है कोर्ट में और कोर्ट में आकर के उनको एक एप्लीकेशन डायल करनी है कि त्रिशा का जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो मध्य प्रदेश में ना हो, दिल्ली में हो। तो इससे पहले ये एक नया मोड़ इस पूरे केस में आ गया है जहां इन लॉस की तरफ से अब त्रिशा पे ही कई सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं।
0: शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीश पाल सिंह, गेटिंग इन दोज डिटेल्स एंड ट्रैकिंग दैट बिग स्टोरी फॉर आवर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स इन दिस मैटर एज वेल फ्लाइंग थिक एंड फास्ट। Another day, another daughter allegedly lost to dowry, this time from MP. This is the case that we were telling you about a few moments ago. Twisha Sharma from UP's Noida had entered into a marriage with Bhopal-based advocate Samarth Singh. The man she met in a dating app and fell in love. What was expected to be a new journey has now allegedly turned into a tragedy. On Tuesday night, her family was informed about her death. Her family has raised serious allegations against her husband-in-law, saying that she was subjected to mental cruelty, domestic abuse, also that she was pressured into ending her pregnancy. They say Twisha had spoken to her mother shortly before her death, expressing the distress she was under. Cops say no suicide note was recovered from the spot. Unnatural death case has been registered. Probe is underway. Now, the grieving family protested outside the MP Chief Minister's residence, demanding justice for their daughter. Family says it is fighting the system. Remember, Twisha's mother-in-law is a former judge. A Bhopal court has granted anticipatory bail to her in this case already. Now, my colleague Anjali Pandey also spoke to the parents of Twisha, who continue to demand justice for their daughter.
9: रेखा जी, आपकी आखिरी बात त्विशा से कब हुई थी? क्या त्विशा ने आपको बताया कि क्या कुछ त्विशा को झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ सहना पड़ रहा है अपने ससुराल में? क्या कभी इस तरीके का जो भी टॉर्चर झेलना पड़ता था, इस बारे में कोई बातचीत हुई थी?
10: हाँ जी, 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था। वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई। मेरी बेटी की फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था। तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया है, बिल्कुल गवार है, तू गवार है बिल्कुल। कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना। 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था
9: जी। रेखा शर्मा जी, क्या आप लोगों ने एक बार ससुराल जाके मैटर सॉल्व करने की या ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की हो?
10: हम एक बार गए थे, जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ये फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ। तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरिबाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा।

0: तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई, वो बिल्कुल।
1: जी
0: जिस दिन मेरी बेटी 12 तारीख को खत्म हुई है, तो रात को हम लोग वहां से आ रहे हैं, वहां पर मेरे रिलेटिव से, हमने यहाँ पे भोपाल में रहते, हमने उनको भेजा, फिर वो घर पे भी गए उनको पुलिस को लेके, कि भाई जहाँ पे वो खत्म, जिस जहाँ पे मारा है वो जगह सील किया जाए। तो वहां पर गए तो बोले, गिरीवाला सिंह बोल रही है मेरी बेटी को तो एम्स में छोड़ दिया, फिर वो घर पे आ गई है, बोले जल्दी जल्दी चेक कीजिए और जाइए यहाँ से, हमें रेस्ट करना है। तब किसी की बेटी, वहां पे हॉस्पिटल में पड़ी अकेली लावारिस, वो उनको रेस्ट करना है।
1: जी रेखा जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं. मैं भी एक बेटी हूँ, आई एम ऑल्सो अ डॉटर, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द ग्रीफ एंड पेन यू मस्ट बी गोइंग थ्रू. हमारी पूरी सहानुभूति है आपके साथ इस लड़ाई में. आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं. एंड वी ऑल्सो वॉन्ट दैट एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट द इन लॉज. इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट थरली एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज इन दिस केस. सर, हमें त्विशा के ऑटोप्सी के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि बेल्ट, जो कि एक बहुत क्रूशल एलिमेंट था, वो बेल्ट डॉक्टर्स को नहीं दी गई थी पोस्टमार्टम से पहले, पोस्टमार्टम के बाद दी गई थी. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जानबूझ के किया गया?
2: जी सर, नमस्कार सभी हमारे सहयोगियों को, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद. हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं. ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं. हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा था. हम जब फाइंडिंग्स हम देख रहे हैं, वो जो मिसमैच हो रही है, बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं जो मिसमैच हो रही हैं और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही है. इसके लिए हमें ये पीएम रिपोर्ट रिलीज करने से पहले बोला गया, ये पीएम रिपोर्ट जो है आपको तब मिलेगी जब आप बॉडी ले लेंगे. हमें तरह तरह से परेशान किया गया कि आप अगर ये बॉडी नहीं लेंगे तो आपको पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी. हमने कहा हम अगर पीएम रिपोर्ट चाहिए हमें, पहले हम देखेंगे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी हम दूसरी बॉडी ले पाएंगे. बोले नहीं, ये हमारा कानून नहीं कहता है कि पहले आप जो है पीएम रिपोर्ट लीजिए, वो बॉडी लीजिए, उसी के बाद पीएम रिपोर्ट लीजिए. हमने बॉडी नहीं ली, हमने कहा मत दीजिए हमें पीएम रिपोर्ट. हमें जब हमने पीएम रिपोर्ट मिली, उसकी जांच पड़ताल की, तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग है, उसके अंदर
1: जी
2: मिसमैच हो रही है सारी डेटा.
1: जी नवनीति शर्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मदर इन लॉ हैं त्विशा की, जो कि रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, वो अपना पावर यूज कर रही हैं इस पूरे केस को और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इस वजह से इतने लूपहोल्स सामने आ रहे
2: जी
1: हैं?
2: जी रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं सत्येंद्र सिंह, इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से.
1: जी
2: और भी
1: सर,
2: जुडिशरी में लोग हैं जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया, वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है. ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है. ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम
1: जी
2: है.
3: And we're reporting on what appears, at least prima facie, clearly as per the allegations of the family on these dowry deaths in the country. And dowry continues to be banned, viewers. In India, it's been outlawed, which means demanding dowry, the fine up to 10,000 rupees, 6 months to 2 years in jail simply if you raise a demand. Now, giving or taking dowry, the fine of 15,000 rupees, a dowry value, whichever is higher, and a minimum of 5 years in jail. Harassment by husband, relatives, fine of 15,000 rupees, a dowry value, whichever is higher, and up to 3 years in jail. Well, dowry death, once, if at all, it is reported, the fine is to 15,000 rupees, a dowry value, whichever is higher, and 7 years in jail can be also extended up to life. The big question here is not whether a law exists. The question here is on how it is implemented.

0: फ्रेंड्स, आज भारत और यूरोप के संबंध एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। सरकारों के स्तर पर हमने एक एम्बिशियस और स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय किया है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन चुकी है। जैसे उर्सुला जी ने कहा था, ये वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है। हमारा प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप तथा मोबिलिटी एग्रीमेंट ने भी हमारे सहयोग को नई दिशा दी है।
1: राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है, और ये भी हो गया कि जो लोग दोषी उनको सख्त से सजा मिलेगी, और ये भी कह दिया कि आने वाले जितने एग्जाम हैं अब के बाद वह कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, हार्ड कॉपीज नहीं होंगे।
2: राहुल गांधी किस मुद्दे पे पीएम को अटैक नहीं करते? हर मुद्दे पे तो पीएम को ही अटैक करते हैं। राहुल गांधी एक बहुत आसान तरीका है प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरीके की बात करना, उनसे सवाल पूछना, जो उनका कर्तव्य रहा है उनकी सरकारों के वक्त से लेकर अब तक। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने अगर कोई एक काम किया है तो बताइए,

0: रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है।
1: After rewriting box office records and emerging as one of the biggest Indian blockbusters in recent years, Dhurandhar the Revenge has continued its winning streak on OTT.
2: हिंदुस्तानी काफिर का सर काट कर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा।
1: रणवीर सिंह स्टारर रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स पाकिस्तान ऑन May 14।

0: राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है, और ये भी हो गया कि जो लोग दोषी उनको सख्त से सजा मिलेगी, और ये भी कह दिया कि आने वाले जितने एग्जाम हैं अब के बाद वह कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, हार्ड कॉपीज नहीं होंगी।
1: राहुल गांधी किस मुद्दे पे पीएम को अटैक नहीं करते? हर मुद्दे पे तो पीएम को ही अटैक करते हैं। राहुल गांधी एक बहुत आसान तरीका है प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरीके की बात करना, उनसे सवाल पूछना, जो उनका कर्तव्य रहा है उनकी सरकारों के वक्त से लेकर अब तक, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने अगर कोई एक काम किया है तो बताइए।

0: Prime Minister Narendra Modi there, landing in Norway. There will be talks on trade and technology. He will also review the progress made in India-Norway relationship. First time in 40 years, the Indian Prime Minister visiting the Nordic country. The image is on your screen as he's being received. Trade and energy supplies will top the agenda. Prime Minister Modi has landed in Oslo. This is going to be the first bilateral visit, like I mentioned, in 40 years. But importantly, remember, Norway is one of the world's major oil and gas exporters. So what do we have till now from his visits? The United Arab Emirates, the Norway. Very different when it comes to these countries, but very clearly, there's a reason. The West Asia conflict is on. Crude oil prices are being hiked. The impact, even though India is not involved in the war, is being seen and felt by each one of us. So therefore, one of the reasons... Look at that visual on his screen. That's the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre. He's meeting him currently. And even in UAE, remember, he was here, received and met with senior most dignitaries and met MBZ, who he calls a brother. Now here as well, the Prime Minister of Norway being receiving Prime Minister Modi. The meeting is on. That's the photo opportunity on your screens. It's going to be a two-day visit. Prime Minister also will call on King Harald and Queen Sonia and hold bilateral talks with the Prime Minister. He'll also review the progress made in India-Norway relationship. Trade, investment, technology is going to be the focus. There will also be a third Nordic India summit that will bring the leaders of other countries as well. I just want to give a background to the viewers on this. This visit, the summit basically, the Nordic India summit was scheduled last year as well. But it had to be cancelled after the Pahalgam terror attacks that had happened. And then the four-day India-Pakistan conflict, where India, of course, bombarded Pakistan for sponsoring terror in Kashmir. Other discussions are also likely to come up in this meeting. There have been meetings, remember, whether it's India and Sweden agreeing to elevate their relationship to a strategic partnership. Then there are visits to other countries as well. But India-Norway Business and Research Summit is what... MEA said will be the focus. Let me now bring you the top story for this bulletin at 4 p.m. Two young women, full of hope, getting married, posing for pictures, only to be found dead within a year of their marriage. A honeymoon period, as it's usually called, but found dead and in mysterious circumstances. I want to take you through both cases one by one. You're looking at images of protests being done by the family members demanding justice. But look at that happy woman on your screen, Twisha Sharma in Bhopal. Another one, Deepika in Greater Noida. I want to first take you through this shocking case. Twisha Sharma was married just 5 months ago. Entered into a marriage with Bhopal-based advocate Samarth Singh. She met on dating app, fell in love. Everything seemed fine on paper. What was expected to be a new journey turning into a tragedy. It's a sensational twist because apparently she married into an influential family, husband an advocate, mother-in-law retired judge. But parents of the woman are heartbroken right now. Twisha Sharma's parents are alleging that there were certain loopholes that are now glaring, that the family has come forth with, that the belt used for hanging by Twisha was not even given to the doctors, that the parents-in-law are trying to get away from it. But I also want to bring you what the mother-in-law has said, because we want to put out both sides of the story. The mother-in-law, who we are told has been a retired judge, is saying Twisha Sharma was on drug abuse, that she was taking narcotic substances, and that perhaps led to her death. Amid all of this, what has been very concerning are some of the last SOS messages received by Twisha. That she was clearly being tortured, harassed, calling her parents-in-law cruel people. These are the images on your screen. Look at that. 5 months. A young woman posing in full bridal attire and posing for pictures, the groom and the bride there on the wedding day. 5 months later, her family members folded hands, begging for justice because they believe that the influential family, the parents-in-law, are not letting the investigation go on in a proper protocol manner. Ravish Pal Singh joins me for the latest on this. Ravish, I thought in 2026, we won't have to at least report on dowry deaths. Yet, again, we have a case in this time from Bhopal, which is a fine city. And she apparently is from Noida region, where her parents have been. What is happening in this case? I want to also understand, what is the boy's family saying? What is their line of defense? How are the parents of the girl taking it ahead? How is the police investigating this further?
1: देखिए इसमें अब आपको बता दें कि पूरे मामले में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि फिलहाल जो त्रिशा का अक्यूज हस्बैंड है समर्थ उसकी बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग हो रही है. हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मौजूद हैं और जैसे कि आपने बताया कि जो त्रिशा है वो नोएडा की रहने वाली थी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है. त्रिशा की अगर हम बात करें तो उसकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो नोएडा की रहने वाली थी. जैसे त्रिशा जो है वो मिथ पुणे भी रह चुकी उस जो साउथ की साउथ मूवी इंडस्ट्री है वहां पे वो काम कर चुकी है. चार मूवीज में उसने काम किया है, कई सारे एड्स उसने किए हैं, वो एक एस्पिरिंग मॉडल भी थी. और जब त्रिशा की शादी हुई है तपन के साथ उस दौरान भी त्रिशा जो है वो बाकायदा एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी जर्मन एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी कंपनी के साथ काम कर रही थी. ये तमाम चीजें निकल के सामने आती है जब हम त्रिशा की बात करते हैं. और उसका जो एक तरीके से रहन सहन था, त्रिशा के जो सपने थे, उसमें कहीं पे भी सुसाइड जैसे किसी बात का जिक्र नहीं था या उसके लिए कोई जगह नहीं थी. क्योंकि त्रिशा की फैमिली का बार बार यही कहना है कि त्रिशा जिस नेचर की लड़की थी वो अक्सर इस तरीके से डीमोटिवेट हो चुके लोगों को मोटिवेट करती थी. त्रिशा हमेशा से सुसाइड के खिलाफ थी, ये फैमिली का एलिगेशन है. और अगर हम चैट देखें त्रिशा की जो उसकी मदर के साथ है, 7 मई को त्रिशा की डेथ 12 मई को हुई है और 7 मई को जो उसने चैट अपनी माँ के साथ की है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो अपने घर में बहुत ज्यादा इस शादी से खुश नहीं थी. वो अपने इन-लॉज के ऊपर एलिगेशन लगा रही है. इन-लॉज के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया उसने कि जब उसका अबॉर्शन हो गया था तो उससे ये पूछा जा रहा था कि उसके पेट में बच्चा किसका था, क्यों अबॉर्ट करवाया गया. और उसको डर रहता था इस बात का कि उसका हस्बैंड जो उस पर नजर रख रहा है. इसलिए चैट्स में वो साफ तौर पर कह रही है कि समर्क यहीं पर मौजूद है, मैं बाद में बात करूँ. माँ से वो बात कर रही है, उसको बता रही है कि उसको किस तरीके से मेंटली हैरेस किया जा रहा है. ये तमाम चीजें चैट से पॉसिबल है जो इंडिया टुडे ने एक्सेस.
0: इट्स सैडनिंग रवीश, व्हाट यू, हां अपना पॉइंट फिनिश करें रवीश. यस,
1: और सिर्फ बात चैट की नहीं है. देखिए चैट के अलावा भी अगर देखें तो जिस तरीके का उसका कैरियर था ईशा का और जो जिस तरीके की उसकी प्रोफाइलिंग है उसे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि वो सिर्फ इस बात की सुसाइड कर लेगी. उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेंटली और
0: सो वाज इट सुसाइड और वाज इट मर्डर और व्हाट एग्जैक्टली लेड टू हर डेथ. रवीश, थैंक यू वेरी मच फॉर द व्यूज राइट नाउ. वी एक्सेस सम ऑफ द एसओएस मैसेजेस दैट वाज सेंट टू हर मदर एंड आई वांट टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू. दिस वाज अ वुमन हु वाज क्लियरली एजुकेटेड एम्पावरमेंट, बट जस्ट इमेजिन द हैरेसमेंट शी मस्ट बी फेसिंग 5 months ऑफ अ वेडिंग. आई एम एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड, saying to her mother on WhatsApp. This was one of the last messages sent to her mother. I'm being asked, mother, whose child am I carrying? She was pregnant, could have been an unplanned pregnancy, some reason that she perhaps wanted or was referring to it and referring to an abortion. And that is when she says that they are cruel people, referring to her family, her parents-in-law, that they are cruel, despicable. They have been suspicious of me. They were constantly bringing accusations on to this young woman who had come all hopeful into this marriage. Then she pleads to her mother, come take me away. They will not let me live. Imagine saying this, sitting in a home where you would think she would be living a prosperous life, but is being tortured consistently, possibly only mentally. But we saw the impact of that in her death. So these were some of the last messages that were sent to her. My colleague Anjali Pandey spoke to the parents of the girl, completely heartbroken, asking for justice. Here's what they are telling us, and here's what I have a question as well. When these messages had come that my life is a living hell, why didn't the parents take her back immediately? What were they expecting? Possibly a settlement of some kind. Today they are so heartbroken. It's painful to watch what the girl's parents are going through. Take a look.
2: रेखा जी, आपकी आखिरी बात त्विशा से कब हुई थी? क्या त्विशा ने आपको बताया कि क्या कुछ त्विशा को झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ सहना पड़ रहा है अपने ससुराल में? क्या कभी इस तरीके का जो भी टॉर्चर झेलना पड़ता था, इस बारे में कोई बातचीत हुई थी?
3: हाँ जी, 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था. वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था. कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
2: जी रेखा शर्मा जी, क्या आप लोगों ने एक बार ससुराल जाके मैटर सॉल्व करने की या ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की हो?
3: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ये फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी, मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा, तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में,
2: जी
3: फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को, 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई, वो बिल्कुल
2: जी
3: जिस दिन मेरी बेटी 12 तारीख को खत्म हुई है तो रात को हम लोग वहां से आ रहे हैं, वहां पर मेरे रिलेटिव से हमने यहाँ पे भोपाल में रहते हमने उनको भेजा, फिर वो घर पे भी गए उनको पुलिस को लेके कि भाई जहाँ पे वो खत्म जिस जहाँ पे मारा है वो जगह सील किया जाए, तो वहां पर गए तो बोले गिरीवाला सिंह बोल रही है मेरी बेटी को तो एम्स में छोड़ दिया, फिर वो घर पे आ गई है, बोले जल्दी जल्दी चेक कीजिए और जाइए यहाँ से, हमें रेस्ट करना है, तब किसी की बेटी, किसी की बेटी वहां पे हॉस्पिटल में पड़ी अकेली लावारिस से, वो उनको रेस्ट करना है।
2: जी रेखा जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, आई एम ऑल्सो अ डॉटर एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द ग्रीफ एंड पेन यू मस्ट बी गोइंग थ्रू, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट दैट एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट द इन लॉज, इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरीड आउट थरली एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज इन दिस केस। सर हमें त्विशा के ऑटोप्सी के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि बेल्ट जो कि एक बहुत क्रूशल एलिमेंट था वो बेल्ट डॉक्टर्स को नहीं दी गई थी पोस्टमार्टम से पहले, पोस्टमार्टम के बाद दी गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जानबूझ के किया गया?
4: जी सर, नमस्कार सभी हमारे सहयोगियों को, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फेटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा था, हम जब फाइंडिंग्स हम देख रहे हैं वो जो मिसमैच हो रही है, बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं जो मिसमैच हो रही हैं और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही है, इसके लिए हमने हमें ये पीएम रिपोर्ट रिलीज करने से पहले बोला गया, ये पीएम रिपोर्ट जो है आपको तब मिलेगी जब आप बॉडी ले लेंगे, हमें तरह तरह से परेशान किया गया कि आप अगर ये बॉडी नहीं लेंगे तो आपको पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी, हमने कहा हम अगर पीएम रिपोर्ट चाहिए हमें पहले हम देखेंगे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा तभी हम दूसरी बॉडी ले पाएंगे, बोले नहीं नहीं ये हमारा कानून नहीं कहता है कि पहले आप जो है पीएम रिपोर्ट लीजिए, वो बॉडी लीजिए उसी के बाद पीएम रिपोर्ट लीजिए, हमने बॉडी नहीं ली, हमने कहा मत दीजिए हमें पीएम रिपोर्ट, हमें जब हमने पीएम रिपोर्ट मिली उसकी जांच पड़ताल की तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे फॉल्ट फॉल्ट फाइंडिंग है उसके अंदर, मिसमैच हो रही है सारी डेटा।
2: जी नवनीति शर्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मदर इन लॉ हैं त्विशा की, जो कि रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, वो अपना पावर यूज कर रही हैं इस पूरे केस को और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इस वजह से इतने लूप होल्स सामने आ रहे हैं?
4: जी रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से।
2: जी,
4: और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया, वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
0: And not just to her mother, it appears that Twisha reached out to one of her close friends as well. We've accessed that conversation too. Here's what she was saying. To her friend, she said, I am trapped. I feel trapped. 5 months into the marriage with a man she met on a dating app, fell in love, appeared to be from an influential family. The friend says to Twisha, I'm worried about you. Then they try to extend the conversation. Here's what happened. Imagine confiding in a close friend, telling her that the situation is not looking okay. Then she goes on to her friend and says, you don't marry. She basically said, tu mat phasna, you don't marry. Cannot talk much. Friend then tells Twisha on this. Twisha tells her friend, I can't talk much. We'll correct that. And then friend says to Twisha, I am with you. I will call later, Twisha says, when the time is right. Twisha saying to her friend, things are not okay, but I cannot talk elaborately on that. I'll tell you more later in detail. That later never came. And this is perhaps a reminder to us that to check on your friends, your daughters, if the situation's not fine, take them back home. Like I've been saying, a divorced daughter is better than a dead daughter. Here's what the brother of Twisha now says.
5: नया बेल ऑर्डर जो आया था उस दिन, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसे लेकर के भी, अब तो जो मृतका है उसके ही चरित्र पे सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें।
6: सर, उसके चरित्र पे सवाल तो उससे पहले जब उसके जीवित रहते ही उठा दिए गए थे। ये बच्चा किसका, ये पूछ पूछ के उसके जो है कान में इतनी बार जो है उसको दुख दिया गया था कि उसने उसकी शिकायत करी थी, और उनसे जब पूछा गया कि आपने इस तरीके की से बातें करी हैं, तो ये उन्होंने बोला कि ये सब पूछने का हमें हक है। ये इनका ईगो, इनका अपने आप में अपने आप को इतनी बड़ी हस्ती समझना, ये पतन का इनके कारण बना है और बनेगा। और बस इसमें नुकसान ये हुआ कि हमारी बच्ची चली गई। ये तो साबित होगा जब इस बच्ची को न्याय मिलेगा। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें यहाँ निकल कर आएंगी, जैसे आपने बेल के ऑर्डर की बात बताई, तो ये अपने आप में एक अनूठा इन्होंने एग्जांपल सेट कर दिया। अब तो बड़े आराम से जो है किसी भी नवविवाहिता की मृत्यु होगी और उसके परिवारजनों को आराम से बेल मिला करेगी 5 महीने में, जिसको बोला जाता है सून बिफोर डेथ। जो हमें लोग सुन रहे हैं वो हैरान हो रहे हैं कि आखिर बेल कैसे दी जा सकती है। तो ये तो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। इसी कोर्ट परिसर में जब एक कोर्ट में हम मौजूद हैं, तो उसके बाद हर 2 घंटे बाद कोर्ट बदलती जा रही है। कुछ तो कारण रहा होगा, क्यों जजेस फॉरवर्ड कर रहे थे, मैं नहीं जानता हूं इस व्यवस्था को, जुडिशरी को, लेकिन ये तो जानने का विषय है ना कि ये तो सीजीआई को संज्ञान लेना चाहिए कि जो न्याय के जो धर्मपालक यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर क्या कारण था कि द कोर्ट्स वर गेटिंग चेंज। कुछ तो कारण रहा होगा, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपके ऊपर दबाव था।
5: आज जो बेल एप्लीकेशन सामने आई है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं त्विशा को लेकर के, उस पे परिवार को क्या कहना है, क्योंकि उसमें उनकी सास ने ये
7: सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में एसआईटी का निर्माण हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी कर देगी सारी चीजों का खुलासा।
5: और त्विशा के ड्रग एडिक्ट होने की बात है उनकी सास ने कही है,
7: वो भी एसआईटी सबकी जांच कर लेगी, निष्पक्ष जांच होगी, तो उसमें ये सारी चीजें निकल आएंगी कि ड्रग एडिक्ट कौन है, गिरीवाला है, उसका लड़का है या तो शादी।
5: आप ब्लड सैंपल की भी बात कर रहे हैं समर्थ की,
7: या समर्थ का ब्लड सैंपल तुरंत ले लिया जाए, मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने साल पुराना ड्रग एडिक्ट है। ये तो यहाँ पर लोकल बच्चा बच्चा जानता है, ये बहुत बड़ा वाला ड्रग एडिक्ट है।
5: कोर्ट में किस तरीके आप लोग के सामने समस्याएं आ रही, चुनौतियां आ रही?
7: देखिए कोर्ट में बार बार बदले गए, जज बदले गए। जो लास्ट हियरिंग था, पहले एक जज के पास में पहुंचा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, फिर दूसरे जज के पास में सुनवाई पहुंची, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये टाइम पास वाला जो टैक्टिस है, लास्ट में जाके जिस जज के पास वो चाहते थे सुनवाई करें, उस जज के पास में पहुंच गई सुनवाई और उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। और किस ग्राउंड पे कर दी, ये भी एक जुडिशियर के ऊपर धब्बा है इनका बेल ग्रांट हो जाना, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाना।
0: One young woman loses a life in Bhopal, another one in Noida. Both young women married within a year, losing their life. Mysterious circumstances. This one fell from the building or jumped from the building. The attempt to show that it was a case of suicide. But her loved ones say that there was no reason for Deepika from Noida to be able to take that extreme step. She was in fact against taking such steps. And they are alleging that there was harassment by the parents-in-law or the family that she married into. Again, charges of dowry harassment and demands that were coming against her. Look at that beautiful woman on your screen. Today, her family left distraught on what exactly happened. But this case is slightly much worse than the Bhopal case. And I say that because Deepika, for the last 6 months, apparently was facing mounting pressure. And her body has been noticed to have severe injury marks, which are corroborating the claims. Look at that. We had to blur some of the images. We cannot go on record on air with the kind of marks that we have seen on her body. She has, while the allegation is that she was being mentally harassed by the parents-in-law, but based on complaint lodged by her father, FIR has been registered under relevant sections. Police saying the accused, the husband Hrithik, and father-in-law Manoj, have been arrested in this case. Despite Deepika's parents giving substantial dowry already at the time of wedding, which meant gold worth 50 lakh rupees, a Scorpio SUV, 5 lakh rupees in cash, this shocking case comes just days after another married woman, Tusha, died by suicide. In 2026, I repeat, women are facing physical, psychological harassment and torture on money. Already a Scorpio vehicle was given, ladies and gentlemen. The claim is they wanted a Fortuner. That's the kind of demands that are coming in, and young women have to pay for their life. So here's what we have details on that. I want you to listen into the voices of the family and to remember, despite stringent anti-dowry law, the game is still on for some families.
8: किस तरीके से ये पूरी घटना हुई और कब से आपकी बेटी को ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे?
9: देखो, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसमें जो कम से कम 10 महीने हो लिए हैं और 10 महीने पहले से ये लड़की को परेशान कर रहे थे। बाकी कल मैं वहाँ पे गया भी था और वहाँ पे जो उसने मुझे बताई, तो मैंने उनसे आपस में बात करके उनसे जो भाई इसे ऐसे मत बढ़ाओ ज्यादा बात है, तुम उसे दबाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा मत करो। तो वहां से मैं जैसे ही घर निकल गया, आधे घंटे बाद मुझे कॉल जाती है, हमारा जो समधी मनोज है उसकी कॉल जाती है कि भाई दीपू जो है वो गिर गई है। तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई सीढ़ी से गिर गई है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिरी है दीपिका जो? तो उन्होंने बताया कि वो छत से गिर गई है। तो जब छत से गिर गई है तो बोले और हम जो है उसे वहां पर लेके जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल में। तो हमने जो मेरा छोटा भाई था, अपने बेटे को और अपने छोटे भाई को और अपनी मिसिज को लेके हम गाड़ी से जैसे ही शारदा पहुंचते हैं तो हमारी बेटी जो वो हमारी बेटी मृत पाई जाती है। चीज का ज्यादा बताना
8: जी बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन अभी आगे इंसाफ कैसे कैसे मांगेंगे, जहां एक तरफ उस परिवार का भी कहना जैसा आपने बताया कि छत से गिर करके मौत हुई है, तो आपको लगता है कि छत से
9: गिर कैसे गिर जाएगी बेटी? किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गिरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा? छत से
8: शरीर पर भी काफी
9: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
8: सर, आप लोग शादी हुई कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी?
10: डेढ़ साल
8: पहले ही शादी हुई थी। क्या मामला हुआ और क्या जो लड़की थी वो आपको बताती थी कि किस तरीके से उनके जो सास ससुर हैं उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं?
10: सर, हमने जो अपनी बेटी की जो शादी करी थी, मतलब एक समाज के हिसाब से और अपनी हैसियत के हिसाब से, मतलब बहुत बेस्ट करी थी। उस टाइम भी हमने अपनी हैसियत से भी ज्यादा चीजें करी थी, ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि मतलब उनकी तो वो भरी नहीं रही थी, इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी सुंदर बच्ची थी कि मतलब कोई ऐसे भी ले जाता, मतलब इतनी सुंदर बेटी थी हमारी। लेकिन मेरे भाई कल मतलब वहाँ गए थे इस विषय में समझाने के लिए, बिल्कुल बातचीत हुई, अच्छे से सब कुछ हुआ, लेकिन मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया, जैसे वो वहां से विदा होकर घर पे आए आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बेटी मतलब गिर गई है। तो भाई ने मतलब पूछा कि कहां से गिर गई है, कैसे गिर गई, तो कोई जवाब नहीं दिया उस टाइम पे कि मतलब शारदा हॉस्पिटल आप आ जाइए। तो जैसे अब गिरने का क्या होता है, छोटी मोटी चोट होगी, हमें भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां जाके देखा तो हमारी बेटी मृत पड़ी हुई है, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे निशान है मार पीट के हर चीज के, और उसको इनफेक्ट उसके पेट में मतलब या तो कोई बुलेट का मतलब घाव है, वो इतना मोटा घाव है, और या मतलब कोई स्क्रू वगैरह कोई सरिया वगैरह मतलब उससे मारा गया है उसको।
11: साथ में ये हुआ था, उन्हें टॉर्चर करा जा रहा था। हाँ। फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए लेके आ, और नहीं लेके आएगी तो तुझे जान से मारेंगे। जब उन्होंने रात उसको मार दिया था, जब हमारे पास उन्होंने फोन करा था, जब हमारे पास फोन करा था तो थर्ड हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके, शारदा में क्यों लेके गए थे? हाँ। जब लेके गए थे शारदा में तो हमें बताते ना हम शारदा में लेके जा रहे, हम तो अपने काम में लग गए, हम तो अपनी बेटी के उसमें लग गए, और उन्होंने चाल चल दी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी, तो क्यों करी थी जब उन्होंने मारी नहीं थी? उन्होंने चक्कुओं से गूंद गूंद के मारा, चक्कुओं से गूंद गूंद के, 50 लाख रुपए लेके आ और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ, नहीं तुझे खत्म करेंगे। सासू ने भी, आदमी ने भी, सुसरे ने भी, सबने उसको टॉर्चर करा और ऊपर से उसे फेंक दिया तीसरी मंजिल से। जब उसे फेंक दिया, जब हमारे घर फोन करा 1 बजे का, जब तुम्हारी बेटी गिर गई है जीने से, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के बाद भी वो भाग गए। हमें खून के बदले खून चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, जैसे हमारी बेटी मारी है हमें भी इंसाफ चाहिए। आज
12: पुलिस ने तो भी हमसे मिले बिना, हमारा कोई व्यू लिए बिना पहले से पहले बोल दिया है कि छत से जो उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो व्यक्ति है मनोज प्रधान, जो लड़की के ससुर लगते हैं, ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और भूमाफिया भी है, इसके खिलाफ पहले ही दर्जनों मुकदमे वहां के जो लोकल थाना है उसमें दर्ज है। तो ये तो जांच को पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, और हो सकता है इसने वहाँ पे लोकल चौकी या थाना स्तर पे पैसे भी पहुँचा दिए हों।
8: ये जो पूरी घटना हुई, 6 महीने से बेटी को परेशान कर रहे थे, तो क्या मारपीट भी पहले भी करते थे, या ऐसी भी बातें आपने सुनी कभी अपनी बेटी के मुंह से?
12: दरअसल बिटिया ने कभी पहले हमें इस बारे में अवगत नहीं कराया, उसे लगा कि शायद छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। अभी कुछ टाइम पहले से उसने बताना शुरू किया, इसी क्रम में कल जो लड़की के पापा हैं वो कल मिलने भी गए थे अपनी बिटिया से, और जाकर के चीजों को सही करके आए कि आराम से चीजें ठीक हो जाएंगी। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर ना बिगड़े ना उजड़े, तो इसी प्रयास में वो लोग जाकर के आराम से शांति से बात करके आए थे। लेकिन घर लौटने के आधे घंटे के बाद ही उनके पास वहां से फोन आ गया कि भाई उन्हें वो गिर गई हैं। तो जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में वहां मृतदेह थी लड़की की, और उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान है। चोटों के निशान देख के आप बता सकते हो कि बेटी के साथ में कितनी ज्यादती की गई है, कितना बुरा हाल किया गया है। उसके ऊपर कट के निशान है, कहीं पे पेचकस के निशान है, या कहीं बुलेट का निशान भी हो सकता है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद में पता चल जाएगा। अभी तो हम सारे लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे पता नहीं कैसी व्यवस्था है कि अभी तक कोई पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर नहीं आया। पुलिस भी यहाँ पे नहीं आई थी, पुलिस भी आप लोगों के आने के बाद में यहाँ पे आई है।
13: मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
0: My colleague Anshul has been reporting from that location, from that residence where heartbroken family members have been. Anshul, just stay on with me, because before I come to you, I want to inform the viewers that in Twisha's case, there was harassment. We clearly know something went terribly wrong. But in Deepika's case, it was much worse, considering there were blatant injury marks.

0: All right. More updates coming in on that story. We are now told that $10,000 reward has been announced on anybody who can give information on Twisha's husband, Samarth Singh. Search for Samarth Singh is on underway in various locations as well, we are told. At this point, remember, he's the husband who is said to be the prime accused in this case, who is on the run. The mother-in-law in this case is out on bail. She's got anticipatory bail over there. Let me cut across to my colleague Ravish Pal Singh, who's been reporting on the story since the very beginning. Ravish, hame is samay bataiye abhi last hamari jab baatcheet hui, aapne kaha ek court mein chal raha hai case. Abhi police ne bola hai ki hum abhi announce kar rahe hain ek reward. On koi bhi agar hame information de sake Samarth ke against. Kya, kitni matlab influential family hai ki police bhi dhoond nahi pa rahi hai. Abhi tak trace nahi kar pa rahi hai. Phone ke through, contact tracing ke through, kuch nahi kar pa rahi ki kahan hai Samarth.
1: Bilkul, dekhiye sabse pehle latest update hum aapko bata dein. Ye district court hai aur yahan pe main chahunga mere camera person se aapko dikhaye wo tasveer. Yahan pe judge Pallavi Divedi ka courtroom hai jahan pe filhal hearing chal rahi hai Samarth ki bail application par. और दूसरी तरफ पुलिस जो है उसने 10,000 रुपए का रिवॉर्ड घोषित कर दिया है हर उस इंसान से जो समर्थ के बारे में कोई जानकारी देगा या उसको पकड़वाएगा. लेकिन इन सब के बीच में जो बार बार एलिगेशन परिवार की तरफ से लग रहे हैं त्रिशा की कि जो फैमिली है जो इन लॉज हैं त्रिशा के वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है और ऐसे में अस्पताल से लेकर के पुलिस तक में या प्रशासन में हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे उनके जानकार लोग मौजूद हैं और इसीलिए वो नहीं चाहते कि त्रिशा केस की इन्वेस्टिगेशन हो या फिर उसका सेकंड पोस्टमार्टम हो वो मध्य प्रदेश में हो. इस बीच में इंडिया टुडे ने आपको बताया था हमारे व्यूअर्स को बताया था कि कैसे जो लिगाइचर होता है जो कि पोस्टमार्टम के समय देना होता है अस्पताल को वो नहीं दिया गया था पुलिस की तरफ से. तो उस पर भी ACP है उन्होंने हमसे बात की है और बताया है कि इस लैब पे भी इन्वेस्टिगेशन में SIT जो है बात करेगी आगे और अगर इसमें कोई लैब पुलिस के IO की तरफ से पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. तो कहीं ना कहीं जो आरोप फैमिली तरफ से लगाए जा रहे थे त्रिशा की वो अब सच होते दिख रहे हैं कि कहीं इन्वेस्टिगेशन में कोई लूपहोल तो नहीं था. हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए लिगेशन का होना या फिर कॉज ऑफ डेथ का पता करना दो अलग अलग चीजें हैं. कॉज ऑफ डेथ जो है वो हैंगिंग से हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन ये वही लिगेशन है या नहीं उसकी रिपोर्ट आज शाम तक आज रात तक आने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन जो बात आपने की कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग फैमिली है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 तारीख को डेथ होती है और आज 18 तारीख को जो प्राइम अक्यूज्ड है पूरे मामले का समर्थ वो अब तक अपस्टैंडिंग है और पुलिस जो टेक्निकल एविडेंस के नाम पे और तमाम चीजें पुलिस के पास होती है ग्राउंड स्टाफ उनका होता है जो उनका सिस्टम होता है पूरा वो तमाम जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो इस वक्त फेल हो गई है एक ऐसे आरोपी को ढूंढने जो अपनी पत्नी की हत्या के आरोप डाउरी डेथ के मामले में जो फिलहाल एक्सपॉन्डिंग है.
0: Well, Ravish, in the times of CCTV cameras, in the times when SIM cards are being tracked, in times when he's not a professional criminal, right? He's not somebody who knows how to abet the law. He's somebody who is said to be a regular person. But in this case, first running away looks like an admission of crime over here. And second, how weak is the police that they've not been able to track him ever since then? And so let's see what really comes.

0: Notably, the concert was originally slated for March 29th, but was earlier pushed to May amid tensions in the Middle East.
1: राहुल गांधी विपक्षी नेता के नाते से जो कहना कहें, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एप्रोप्रिएट एक्शन था, सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई की जांच हो रही है, धरपकड़ हो रही है, और ये भी हो गया कि जो लोग दोषी उनको सख्त से सजा मिलेगी, और ये भी कह दिया कि आने वाले जितने एग्जाम हैं अब के बाद वह कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, हार्ड कॉपीज नहीं होंगी।
2: राहुल गांधी किस मुद्दे पे पीएम को अटैक नहीं करते? हर मुद्दे पे तो पीएम को ही अटैक करते हैं। राहुल गांधी एक बहुत आसान तरीका है प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरीके की बात करना, उनसे सवाल पूछना, जो उनका कर्तव्य रहा है उनकी सरकारों के वक्त से लेकर अब तक। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने अगर कोई एक काम किया है तो बताइए।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
2: somebody save me,
1: to timeless favorites,
3: and life is like a song,
1: and new discoveries.
4: So much more than a history. Wake up.
1: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: हो गया कि जो लोग दोषी उनको सख्त से सजा मिलेगी और ये भी कह दिया कि आने वाले जितने एग्जाम हैं अब के बाद वह कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, हार्ड कॉपीज नहीं होंगे।
6: राहुल गांधी किस मुद्दे पे पीएम को अटैक नहीं करते? हर मुद्दे पे तो पीएम को ही अटैक करते हैं। राहुल गांधी एक बहुत आसान तरीका है प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरीके की बात करना, उनसे सवाल पूछना, जो उनका कर्तव्य रहा है उनकी सरकारों के वक्त से लेकर अब तक। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने अगर कोई एक काम किया है तो बताइए।

0: Welcome back, viewers. I want to take you through some tragic details that are emerging right now in the Tweesha death case. Her parents call it murder. They call it harassment and a dowry death. On the other account, the parents and her in-laws say that she took her own life. The last final video has now just been released. You can see on your television screen the final moments of Tweesha captured on camera. The CCTV images show Tweesha going upstairs. Moments later, she was given CPR on the stairs. On camera, Tweesha's body being taken downstairs. Now, these were the last images that were recorded from the CCTV cameras at the residence of the in-laws. I want to immediately cut across to my colleague Ravish, who's joining us from Bhopal with more details coming in. Ravish, ye jo final aakhri video Tweesha ka nikla hai, jisme dikh raha hai Ravish ke wo upar ja rahi hain, phir unko CPR diya ja raha hai, unki body niche leke aayi ja rahi hai. Isme kya details aa rahi hain, kya aap jod sakte hain?
1: देखिए, जैसे कि पहले ही दावा किया जा रहा था परिवार की ओर से कि इस पूरे मामले में जो टाइमलाइन थी उन्होंने जो पुलिस को भी बताई थी और बाद में बेल ऑर्डर्स में कोर्ट में भी सबमिट की गई थी, उसमें साफ तौर पे यही लिखा गया था कि जो आखिरी मूवमेंट थे तुषा के वो किस तरीके से थे. पहले वो टीवी देख रही थी, उसके बाद वो टीवी देखते हुए अकेले ऊपर चली जाती है, पहले नीचे जाती है, फिर फोन पे बात करते हुए ऊपर अपनी छत की ओर जाती है. और काफी देर तक जब वो वापस नीचे नहीं उतरती है तो सीसीटीवी में हम देख सकते हैं कि बाद में जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से वो तुषा की को लेकर के नीचे आ रहे हैं, उसे सीपीआर देने की कोशिश हो रही है, वो तमाम चीजें अब दिख रही है. तो जो बातें परिवार ने कही थी पुलिस को कोर्ट को अब वो एक एविडेंस के रूप में सामने है और ये एक्सक्लूसिव है जो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है, जो हम अपने व्यूअर्स को दिखा भी रहे हैं. और इस तस्वीरों के जरिए जो क्लेम किया जा रहा है तुषा के इन-लॉज की तरफ से वो अब वीडियो फुटेज में भी यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है. वो परिवार का साफ तौर पे यही कहना है कि तुषा जो है वो अकेले ही छत की ओर गई थी और वहीं पे उसने फांसी लगाई और उसके बाद उसे नीचे उतारा गया. और नीचे उतारने के बाद ऐसा नहीं है कि उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया हो, बल्कि उसे CPR देकर के उसकी जान बचाने की भरसक कोशिशें हुई, लेकिन उसमें फिलहाल वो सफल हो नहीं सके.
0: कितना अंतर है रवीश जब तुषा ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं. ये सीसीटीवी उन्हीं की जो इन-लॉज हैं उनके घर से बरामद हुआ है, वहीं से रिकॉर्डिंग हुई है. कितना अंतर है कि वो ऊपर गई और वापस आई, बीच में कोई क्लिप मिसिंग है या नहीं है? और इनको जोड़िए, जो तुषा के जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो क्या कह रहे हैं, और जो तुषा के इन-लॉज हैं वो क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, इस पे अगर हम बात करें तो अभी तक तो सिर्फ तुषा के जो परिवार के लोग हैं, उनकी मदर हो या उनके फादर हो या उनके भाई हो, उनके रिएक्शन आ रहे थे. आज पहली बार ऐसा हुआ है जब तुषा के इन-लॉज सामने आए हैं, उनकी मदर इन-लॉज सामने आई प्रेस के सामने, उन्होंने तमाम बातें की. तो उन्होंने काउंटर किया है उनके हर एक एलिगेशन का, जो तुषा की फैमिली एलिगेशन अब तक लगा रही है, हर उस एक एलिगेशन का उन्होंने काउंटर किया है. तुषा की फैमिली का सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि बड़े इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं और इनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही ना तो केस समय पर रजिस्टर हो पाया, ना ही एम्स में ठीक तरीके से उनकी बेटी को देखा गया और ना ही एम्स ने जो है पोस्टमार्टम ठीक तरीके से किया. ये एलिगेशंस लगाए गए थे तुषा की फैमिली की तरफ से, लेकिन आज उनका काउंटर किया है उनकी मदर इन लॉ ने, तुषा की मदर इन लॉ ने, गिरिबाला सिंह ने, जो कि रिटायर्ड जज भी हैं. और उन्होंने कहा कि एम्स इससे पहले वो कभी गई भी नहीं है. और एम्स में इनका एलिगेशन ये है गिरिबाला सिंह का कि एम्स में उल्टा इन लोगों के ऊपर हमला हुआ जब पता चला तुषा की फैमिली को कि वो डेथ हो गई है उसकी, वो नहीं रही इस दुनिया में. तो उसके जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने गिरिबाला सिंह और उनकी फैमिली के ऊपर वहां पे असॉल्ट किया, जिसके बाद पुलिस को कॉल करना पड़ा और पुलिस ने फिर इनको एम्स से निकाला. तो हर एक एलिगेशन का, तो ड्रग्स का एलिगेशन लगाया तुषा के परिवार ने समर्थ के ऊपर, तो उसका भी जवाब दिया है समर्थ की माँ ने. और उन्होंने ये भी कहा है कि समर्थ जो है वो ड्रग्स नहीं लेता था, ये पूरी तरीके से गलत आरोप है. उन्होंने ये जरूर कहा कि समर्थ के ऊपर ड्रग्स के फेक एलिगेशन तुषा के फादर ने पहले जरूर एक बार लगाए थे, लेकिन जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगी कि उनके तरफ से गलत एलिगेशन समर्थ पे लगाए गए थे. तो ड्रग्स के एलिगेशन पर भी काउंटर किया है और इसके साथ ही जो दूसरे एलिगेशन थे इन्फ्लुएंस को लेकर के, पावर को लेकर के, उसको लेकर के भी यहाँ पे गिरिबाला सिंह जो है वो काउंटर करती नजर. नजर आई, और सिर्फ यही नहीं अपने पूरी स्टेटमेंट के दौरान गिरिबाला सिंह जो है वहाँ कैमरे के सामने लगातार उनकी आंखों में आंसू थे और वो काफी मौकों पर टूट भी गई। उन्होंने बताया कि जिस परिवार के लोग खुद देश की सेवा में शहीद हो चुके हों
0: okay.
1: उस परिवार को आज इस तरीके से मीडिया ट्रायल के जरिए या फिर तमाम okay. दूसरे साधनों के जरिए कोर्ट के मामले में घसीटा जा रहा है।
0: ओके ऑल राइट रवीश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। व्यूअर्स, टिल नाउ विद व्हाट वी नो इन टर्म्स ऑफ द सीसीटीवी इमेजेस, इन टर्म्स ऑफ व्हाट्सएप चैट्स, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्सएप चैट्स डज सिग्निफाई that Tuisha was being harassed by her in-laws, and she made that very evident to her family, to her mother, to her father, and to her cousin as well, repeatedly so over a month. Who is responsible? We don't know whether this is murder, whether how you know the death has taken place, or she took her own life. But the fact is, I think one needs to step back and really look into and question. Even when it comes down to parents, if Tuisha was being harassed by her in-laws and they must pay for it, what about her parents? Over a month, she kept saying that she cannot live in that house. Yet her parents kept telling her to compromise, a word that has become synonymous with dowry tax. A quick break. Stay with us. On the other side is my colleague, Maria.

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: अगर ये बॉडी नहीं लेंगे तो आपको पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी. हमने कहा हम अगर पीएम रिपोर्ट ले चाहिए हमें, पहले हम देखेंगे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी हम दूसरी बॉडी ले पाएंगे. बोले नहीं नहीं, ये हमारा कानून नहीं कहता कि पहले आप जो है पीएम रिपोर्ट लीजिए, वो बॉडी लीजिए, उसी के बाद पीएम रिपोर्ट. हमने बॉडी नहीं ली, हमने कहा मत दीजिए हमें पीएम रिपोर्ट. हमें जब हमने पीएम रिपोर्ट मिली, उसकी जांच पड़ताल की, तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग है, उसके अंदर मिसमैच हो रही है सारी डेटा.
4: जी नवनीति शर्मा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मदर इन लॉ हैं त्विशा की, जो कि रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, वो अपना पावर यूज कर रही हैं इस पूरे केस को और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इस वजह से इतने लूप होल्स सामने आ रहे हैं?
3: जी रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं. सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से. जी, और भी जुडिशरी में लोग हैं. जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया. वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है. ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है. ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा? हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत.

लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं।

0: रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है.
1: After rewriting box office records and emerging as one of the biggest Indian blockbusters in recent years, Dhurandhar the Revenge has continued its winning streak on OTT.
2: Hindustani kafir ka sar kaat kar Musharraf ke dastarkhan par rakha tha Major Iqbal ne. Khuda kasam. अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा.
1: द रणवीर सिंह स्टारर रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स पाकिस्तान ऑन May 14.